0: జ్ఞాన శక్యముగాని.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी. हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारी के विश्व के नवनिर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान की शुरुआत और ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी.
2: 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी. समारोह के दौरान 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे. इसके बाद राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी. इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर द वर्ल्ड रिन्यूअल परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी. इसके साथ ही राष्ट्रपति यूथ फॉर विकसित भारत अवेकनिंग इनर स्ट्रेंथ फॉर नेशन बिल्डिंग अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करेंगी. महेश सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, बड़ौदा.
1: इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल गुजरात के एकतानगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए. इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोणों और सामूहिक राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है. राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
3: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है. भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है. फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं. उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है. जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं.
1: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं.
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए. expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने.
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने भारतीय उद्योग जगत से केवल कारोबार का आकार बढ़ाने की बजाय सुदृढ़, सुशासित और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंपनियां बनाने पर ध्यान देने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि भारत के विकास का अगला चरण गुणवत्ता आधारित होना चाहिए और इसके लिए कॉरपोरेट क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास पर अधिक निवेश करना होगा. ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में कल वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों को अपने यहां या शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझेदारी के माध्यम से R&D पर खर्च बढ़ाना चाहिए. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को मामला लंबित रहने के दौरान न्यायालय के दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर साझा न करने की चेतावनी दी है. प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत को बताया कि माल्या ने जांच एजेंसी का हलफनामा औपचारिक रूप से प्रस्तुत होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था. मिजोरम के लोंगतलाई जिले की एक स्ट्रॉबेरी उत्पादक महिला जेट टी लालरी थांगी को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन संस्था द्वारा FAO 100 वीमेन हीरोज इन एग्री फूड सिस्टम्स एंड रूरल डेवलपमेंट के रूप में सम्मानित किया गया है. ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष 2026 का हिस्सा है जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई एक पहल है. संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तानी अधिकारियों पर विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग और मनमाने ढंग से हिरासत में लेने का आरोप लगाया है. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 63वें सत्र को संबोधित करते हुए वोल्कर तुर्क ने पाकिस्तान और भारत के सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों पर सरकारों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं को उजागर किया. जापान एशियाई खेलों में आज भारत की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और मीराबाई चानू पदक के लिए दावेदारी पेश करेंगी. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
5: दिस इज आकाशवाणी.
4: द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना. President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation ceremony of the Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara today. She will also launch Brahma Kumari's campaign and inaugurate the Global Spiritual Palace at Vadodara. More on this from our correspondent.
2: In the 75th convocation ceremony, President Murmu will confer degrees to over 12,600 students. This includes 6,713 from the Faculty of Commerce and 1,102 from the Faculty of Technology and Engineering. During the ceremony, a total of 201 gold medals will be awarded to 160 students for their academic achievements in the undergraduate and postgraduate courses. After that, the President will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of Brahma Kumaris in Vadodara. During the program, the President will also inaugurate the Spiritual Awakening for the World Renewal Project and will virtually launch the Youth for Viksit Bharat Awakening Inner Strength for Nation Building campaign. Gujarat Governor Acharya Devrat and Chief Minister Bhupendra Patel will be present on the occasion. Mayur Solanki, Akashwani News, Vadodara.
4: Yesterday, President Murmu conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of the Indian cinema at a grand ceremony held against the grand backdrop of the Statue of Unity at Ektanagar in Gujarat. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge, bringing together different languages, regional perspectives and shared

0: చాలా బాగా పాడుతున్నారే.
1: పైషజ్యం మందరం.
0: చూడండి

0: वाणी, मैं हूँ साक्षी मांडवाला और मेरे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं शाहिद जी और हम दोनों आपके लिए लेकर आने वाले हैं द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स हैपनिंग इन आईची नगोया जापान। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों जो आज दिन की आ रही है वो है सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से, क्योंकि जय मीना ने भारत को पहली बार सॉफ्ट टेनिस में एक मेडल अश्योर करवा दिया है एशियन गेम्स में। जी हाँ, यू हर्ड मी राइट, इंडिया स्टैंड्स टू बी अश्योर्ड ऑफ अ मेडल फिनिश एंड ऑल्सो ऑफ अ मेडल इन द वर्ल्ड ऑफ सॉफ्ट टेनिस in Asian Games. A sensational comeback from Jay Meena to deny Sherwin Nugent the semi-final spot. और हमने ये देखा कि पहले वो 3-3 के साथ गेम में, फाइनल गेम में अटल एक साथ टाइड अप थे, लेकिन Jay Meena was trailing 3-5 in the final game before clawing back to win the next 4 points and eventually taking the quarter final 4-3. आपको बता दूं final score line रही 0-4, 4-2, 2-4, 4-2, 5-3, 2-4, 7-5 and obviously India's Jay Meena came out successful at the end of that game to move ahead for assuring India for the first medal in soft tennis. Jay Meena ka jo ab mukabla hai, which is in the second men's single semi-final, wo hoga aaj dopahar 12 baje. शाहिद
1: जी बिल्कुल, शूटिंग से बढ़िया खबर आ रही है। हालांकि अभी तक जो उम्मीद की जा रही वैसा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन शूटिंग के स्कीट वर्ग से, महिला वर्ग से एक अच्छी खबर है। भारतीय जो तिकड़ी है, परिणाश धारीवाल, महेश्वरी चौहान, इसके अलावा रायजा ढिल्लोन की जो महिला टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है, परिणाश धारीवाल और रायजा ढिल्लोन ने 125 में से 111 अंक जुटाए, जबकि महेश्वरी चौहान ने 109 अंक हासिल किए, कुल 331 अंक जुटाए और भारत ने यहां पर कांस्य पदक जीत लिया। इस वर्ग में चीन 357 अंकों के साथ गोल्ड, जबकि कजाकिस्तान ने 336 अंकों के साथ सिल्वर मेडल जीता। यानी काफी ज्यादा फासला रहा गोल्ड और कांस्य पदक का, जो देखा जाए अंक देखा जाए तो। वो उधर महिला वर्ग की स्कीट स्पर्धा में भारतीय महिला निशानेबाज राजा ढिल्लोन और परिणाश धारीवाल दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई। उम्मीद है यहां से भी अच्छी खबर आएगी। चलते चलते एक और शूटिंग की खबर देते, हालांकि मनु भाकर भी फाइनल मुकाबला खेल रही है, लेकिन इससे पहले बताएं दिन की जो शुरुआत हुई थी बेहद निराशाजनक रही थी। साक्षी, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल मिस पर जो मुकाबला था, वहां मनु भाकर ने 579 के स्कोर के साथ व्यक्तिगत फाइनल में पहुंच गई, हालांकि एकलौती खिलाड़ी रही। वहीं ईशा सिंह, जिनसे काफी उम्मीदें थी, सुरुचि जो बेहद जबरदस्त खिलाड़ी है, दोनों कुछ खास नहीं कर पाई, दोनों फाइनल के लिए चूक गई। बताएं ईशा सिंह ने 572 अंक जुटाए, वहीं सुरुचि 568 अंक ही जुटा पाई। हालांकि अभी मनु भाकर फाइनल मुकाबला खेल रही है।
0: राइट, एंड नाउ मूविंग ऑन टू सेपक तकरो, जहां पर भारत ने आज फिलीपींस को पहले मैच में 2-0 से हरा दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें, दिस वॉज फ्रॉम द टीम रेगु प्रिलिमिनरी ग्रुप बी क्लैश, इसके बाद भारत ने फिलीपींस को दूसरे मैच में भी 2-0 से लीड बना ली। सो इट लुक्स लाइक इंडिया आर क्लोजिंग इन ऑन अ क्लीन स्वीप ओवर फिलीपींस, क्योंकि अब तीसरा और फाइनल मुकाबला इस वक्त चल रहा है। वहीं अगर रोइंग की भी बात कर ले तो सतनाम सिंह और सलमान खान ऑफ इंडिया दोनों दे फिनिश सेकंड इन द मेंस डबल्स कल्स हीट्स विद 6 मिनट्स 15.63 टाइमिंग को क्लॉक करके एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स फाइनल ए। वहीं बलराज पनवर फिनिश थर्ड इन द मेंस सिंगल्स कल्स एंड हैज एडवांस टू फाइनल ए। महिलाओं की अगर रोइंग में बात करते हैं तो इंडिया फिनिश थर्ड इन द रोइंग वुमेन्स 4 हीट्स एंड दे विल नाउ टेक पार्ट इन द फाइनल ए। शाहिद
1: जी बिल्कुल, टेबल टेनिस से खबर आ रही, मिश्रित युगल के दूसरे दौर में भारत के हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े ने मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातमित अली के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला है। वहीं मानुष शाह और दिया चितले ने श्रीलंका के चानुल कुलपाडू और भिवांडी को 3-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की है।
0: राइट, कनू स्पिरिट में थोड़ी सी अच्छी खबर आपको मैं देने वाली हूँ, क्योंकि भारत के जो मेंस कयाक है फोर 500 टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाई फॉर द फाइनल ए। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेशन कनू स्प्रिंट में जो है वो है अनम अरुण।

सुबह के 11:04। दोस्तों, मुझे पता है कि आप इंतज़ार कर रहे होंगे नमस्ते हेलो आदाब का। जी हाँ, तो एक बार फिर से नमस्ते हेलो आदाब के साथ मैं हूँ निशा, आपके साथ आज इस खूबसूरत म्यूज़िकल जर्नी में, आपकी हमसफ़र ऐसा कह सकते हैं। तो जी हाँ, आज आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ से भी हमारे शो को सुन रहे हो, बस यही कहना चाहूँगी कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जहाँ भी रहिए खुशी बिखेरते रहिए, है ना, पॉजिटिव।

बिखेरते रहिए, क्योंकि एक दिन के स्टार्ट के लिए ना जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो है पॉजिटिविटी एंड होपफुलनेस, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं। तो होपफुल रहिए, पॉजिटिविटी बिखेरते रहिए, और साथ में आप सभी को सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं, और आप सभी को मेरा यानी निशा का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जी हाँ, यही कहना चाहूंगी कि जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि टैंक बंड की तरफ काफ़ी सारा ट्रैफिक है, तो अगर आप उस रास्ते कहीं जाने के लिए निकलने वाले हैं तो पहले देख लीजिएगा ट्रैफिक का हाल, ऐसा ना हो कि आप वहां से निकले और ट्रैफिक में स्टक हो जाए, कि नहीं। तो जी हाँ, बप्पा हैं यहाँ पर हमारे शहर में, हर जगह उनकी उपस्थिति है, और उनकी उपस्थिति होने से शहर का हाल कुछ बदला बदला सा लग रहा है। हर जगह पॉजिटिविटी है, हर जगह गाने सुनने को मिल रहा है। कभी कभी तो ऐसा भी हो रहा है कि आधी रात को नींद टूट जा रही है, क्योंकि गाने जो इतनी ज़ोर ज़ोर से बजाए जा रहे हैं, कि नहीं। तो कोई बात नहीं है, बहुत मज़ा आ रहा है। और कोई भी चीज़ हो, उस चीज़ को ना उस चीज़ में हमें ढल जाना चाहिए, क्योंकि वो जो वक्त होता है वो फिर दोबारा लौट कर नहीं आता है, कि नहीं। नो डाउट फेस्टिवल्स हर साल आते हैं, बट हर साल एक फेस्टिवल का जो एक साल में महत्व होता है, वो हो सकता है कि दूसरे साल उस फेस्टिवल को उस तरीके से ना मनाया जा रहा हो और वो महत्वता नहीं बच जाती है। तो जो भी टाइम है उसको एंजॉय कीजिए, हर एक मोमेंट को एंजॉय कीजिए, और जैसा कि मैंने कहा, पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ और कुछ खूबसूरत गाने प्ले करने वाली हूँ आपके लिए। तो सबसे पहला जो एक मेरा फेवरेट सॉन्ग है, उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाज़ों में, ये सॉन्ग बहुत ही प्यारा है। इसकी धुन आपने ऑलरेडी सुनी है, तो सुनते रहिए। यह है FM रेनबो 101.9।

0: Hello, listeners. Are you someone who loves getting lost in the pages of a good book and wishes others could experience the same joy that you found between those pages? Have you ever found yourself recommending a book to your friends just because you simply felt that this is a must read? What if we told you that you could now share that experience not just with one person, but with thousands of listeners? If the thought of your voice bringing a story to life excites you, then this one is for you. FM Rainbow is thrilled to present Read with Rainbow, a brand new initiative that celebrates the joy of reading through the voices of young readers. If you're between 15 to 25 years of age and have a passion to share a good read with listeners across the airwaves, then share us your name and mobile number to our mailing address readwithrainbow2026@gmail.com. So dear listeners, what are you waiting for? Don't just read a great book, be the voice that shares it. Read with Rainbow, where every page finds a voice and every voice inspires a reader.
1: जी हाँ, तो जैसे कि आपने सुना कि अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं, कुछ लिखना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर रीड विथ रेनबो में एक इसका पार्ट बनकर रेडियो पर अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं और साथ में अपने दिल की बात जो आप हो सकता है कि बहुत सारे लोगों से कहना चाहते होंगे, लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें कहने के लिए बहुत कुछ होता है हमारे पास, लेकिन सुनने के लिए लोग नहीं होते हैं ना. तो ये जो रेडियो है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है रीड विथ रेनबो के साथ, कि आप जो भी आपने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी हैं, अपने दिल की बातें लिख रखी हैं, वो आप रीड विथ रेनबो के साथ लोगों तक पहुंचा सकते हो. वेल दोस्तों, आप सुन रहे आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 एंड यू लिसनिंग टू नमस्ते हेलो आदाब, अ शो वे म्यूजिक मीट्स कॉन्वर्सेशंस. वेल, आई एम निशा राइट हियर विद यू एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आई विल बी प्लेइंग अ रिफ्रेशिंग मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश hits, and of course in between the music we'll also have some heartwarming conversations. And you know what, friends, I truly believe that it's these heart touching conversations and soulful songs that can bring us a little closer to ourselves even on the busiest days. Kabhi kabhi yun hota hai na ki bas kisi song ke kuch lyrics kafi hote hain hamara mood refresh karne ke liye, hame ek jagah se dusri jagah pahunchane ke liye mentally, ya fir hame zindagi ko ek naye nazariye se dekhne ka mauka dene ke liye. कभी कोई सॉन्ग हमें हमारी पुरानी यादों की तरफ खींच ले जाता है, तो कभी किसी सॉन्ग को सुनकर यह एहसास होता है कि प्यार और प्यार से निभाए गए रिश्ते कितने खूबसूरत होते हैं. और कभी कभी लाइक फॉर एग्जांपल फेस्टिवल में बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो हमें दिल खोल कर इन्जॉय करने का, दिल खोल कर नाचने का मौका देते हैं. सो वेर एवर यू राइट नाउ, मे बी गोइंग टू वर्क, ट्रैवलिंग, वर्किंग, स्टक्ड इन द ट्रैफिक, रिलैक्सिंग एट होम, और मे बी जस्ट प्रोक्रेस्टिनेटिंग अ लिटिल इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग दैट वन टास्क, आई होप दिस शो फील्स लाइक अ कम्फर्टिंग कंपेनियन टू यू एंड माइट एड अ लिटिल मोमेंट ऑफ पीस इन योर बिजी रूटीन. तो बस आने वाले कुछ पलों तक स्ट्रेस को थोड़ा साइड में रखिए और म्यूजिक और कॉन्वर्सेशंस के इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनिए विद मी निशा, ओनली ऑन आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग विच आई एम गोना प्ले इज इन द वॉइस ऑफ आशा भोसले, और ये जो सॉन्ग है काफ़ी खूबसूरत है, फ्रॉम द फिल्म रंगीला, और आशा भोसले जी की आवाज़

तो क्या ही कहने हैं कि नहीं। तो चलिए उनको याद करते हुए ये सॉन्ग आपके लिए, 11:20। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 101.9। और अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं और अपने कोई दिल की बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं, यानी कोई मैसेज, कोई चीज़ जो आप डेडिकेट करना चाहते हैं किसी को कुछ लिखकर, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822।

0: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఏఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: జాగ్తే రహో, జాగ్తే రహో.
2: సిర్ఫ్ జాగ్తే నహీ, సజగ్ రహో.
1: సిర్ఫ్ రాతో మే నహీ, జిందగీ కే హర్ మోడ్ పర్ సజగ్ రహనా హై.
2: అఫ్వాహోం సే,
1: ధోకా ధడీ సే
2: జాగరూక్ హోనా హై అప్నే అధికారో కే ప్రతి,
1: అప్నే జిమ్మేదారియో కే ప్రతి.
2: హర్ సహీ ఫైసలే కీ శురువాత్ హోతీ హై జాగరూకతా సే, ఔర్ జాగరూకతా కీ శురువాత్ హోతీ హై సజగ్ భారత్ సే.
1: సజగ్ భారత్,
2: జాగరూక్ భారత్,
1: సశక్త్ భారత్.
2: సునీ సజగ్ భారత్
1: సోమవార్ సుబహ 11:30 పర్ సిర్ఫ్ ఎఫ్ఎం రెయిన్బో 101.9 పర్. సజగ్ భారత్,
2: జాగరూక్ బనియే,
1: సజగ్ రహియే.
3: जी हाँ, जैसा कि आपने सुना अभी तक, आई थिंक आप जागरूक हो चुके होंगे. एवरी मंडे 11:30 AM हर सोमवार को आप सजग भारत सुन सकते हैं. अपने अधिकारों के बारे में, जागरूकता के बारे में, क्या सही है क्या गलत है, हर चीज़ के बारे में. और जैसा कि नाम है सजग भारत, इससे ही पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी. वेल दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी हैदराबाद एफएम रेनबो 101.9 के साथ. शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, एंड इट्स 11:33 बाय द स्टूडियो क्लॉक. एंड यस, जैसे कि मैंने कहा था कि आप भी अपनी मौजूदगी यहाँ पर हमें बता सकते हैं, यू नो, व्हाट्सएप पर मैसेजेस भेज कर. तो जी हाँ, यहाँ पर हमारे साथ कुछ लिसनर्स जुड़े हुए हैं, उनके मैसेजेस मैं शामिल करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले तो आप सभी जो हमसे जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, एंड विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी. वैसे तो बप्पा के रंग में हम सब रंग ही चुके हैं, लेकिन फिर भी यू नो, बहुत सारे ऐसे रंग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हमेशा रहते हैं. जैसे एक रंग है जिसका रंग मुझे लगता है कभी भी नहीं उतरना चाहिए, और वो है खुशी का रंग. जी हाँ, वो जो रंग है ना, वो आपको अपने ऊपर हमेशा ओढ़े रहना चाहिए, और साथ में आप जिधर भी जाएं उस खुशी के रंग में दूसरों को भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको भी आप उस रंग में रंगे. वेल, यहाँ पर हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, एंड यहाँ पर मैं देखती हूँ किनके मैसेज हैं. यहाँ पर हमारे साथ हैं अशोक जी, जो लिखते हैं, जीवन एक टेस्ट है जिसमें खुशियाँ रेस्ट है. वाह, क्या बात है. ज़्यादा सोचना वेस्ट है क्योंकि हम खुद ही इस संसार में एक गेस्ट है. बिल्कुल सही बात कही आपने, इसीलिए स्वयं खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, हमारे लिए यही बेस्ट है. और यही तो है खुशी का रंग. जी हाँ, खुश रहना है और दूसरों पर भी वो रंग चढ़ाना है, क्योंकि ये आपने सुना, जैसे कि ये भी कह रहे हैं कि यही बेस्ट है. और खुशियाँ ही हमारे जो जीवन का टेस्ट है ना, उसमें हमारे लिए रेस्ट है. ज़्यादा सोचना वेस्ट है. और ये तो आप जानते ही हैं, हम सबको जानना चाहिए कि इस संसार में हम सभी गेस्ट हैं. तो ठीक है, वेल, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी इस मैसेज के लिए, और साथ में गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हैं. लिखते हैं हैप्पी वेंसडे, तो आपको भी अ वेरी हैप्पी वेंसडे. उम्मीद है आपका दिन अच्छा होगा. एंड देन हमारे साथ यहाँ पे जुड़ी हुई हैं आर्निका चंदू सिकंदराबाद से. ये लिखती हैं, आका नमस्ते, आपको भी नमस्ते. एंड इट्स माय अम्माज बर्थडे, आई लाइक अम्मा एंड आई लव अम्मा सो मच, माय स्वीट अम्मा. तो जी हाँ, माँ तो सभी की प्यारी होती है, एंड आज उनका बर्थडे है, तो विशिंग हर अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. सो एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है फ्रॉम द फिल्म गुड्डी. ओके, सो आई विल ट्राई टू प्ले दिस सॉन्ग. और क्योंकि ये एक डेडिकेशन है आप के अम्मा का बर्थडे है, तो मैं ज़रूर इस सॉन्ग को प्ले करूँगी. एंड देन हमारे साथ यहाँ पर सरवर अली जी भी जुड़े हुए हैं, जो लिखते हैं गुड मॉर्निंग. तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो फिलहाल के लिए तो चलिए आर्निका जी की अम्मा को स्पेशल फील कराते हैं, उन्हें स्पेशल फील कराते हैं, और उनकी पसंद का ये सॉन्ग रिक्वेस्ट फ्रॉम द फिल्म गुड्डी बोले रे पपिहारा, इस सॉन्ग की इन्होंने रिक्वेस्ट की है, तो मैं इस सॉन्ग को प्ले करूंगी। एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, सुनते रहिए ये एफएम रेनबो 101.9, शो चल रहा है नमस्ते हेलो आदाब, और मैं हूं निशा आपके साथ।

Dear listeners, you are tuned in to Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9, listening to Namaste, Hello Adab, and I'm Nisha right here, your companion on this lovely musical journey where I'm playing a mix of Hindi and Western hits. एंड आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फिलहाल के लिए इस सेगमेंट में हमारे पास जितना भी वक्त है इसे अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि 12 बजे हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार और 12:05 पर न्यूज़ इन इंग्लिश. लेकिन फिलहाल के लिए एक मैसेज यहाँ पर हमारे पास है. सरवर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि आज महान गीतकार राजा मेहदी अली खान जी की बर्थ एनिवर्सरी है, तो उनका कोई सॉन्ग सुनवाइए. जी हाँ, आज जनाब राजा मेहदी अली खान जी, जो कि हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध, ऐसा कह सकते हैं कि गीतकार तो थे ही, भारतीय कवि भी थे, लेखक भी थे, उनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है. और आपको बता दें कि उन्होंने 1940 और 1950 के दशक में बॉलीवुड को बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत गाने दिए हैं. तो उनका नाम याद आते ही एक गाना मेरी प्लेलिस्ट में जो है, मैं आपको ज़रूर सुनवाना चाहूँगी. ये गाना एक्चुअली मुझे बहुत बहुत बहुत पसंद है, एंड आई थिंक कि आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है. मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में है. ये जो फिल्म थी, आई थी 1966 में, दुल्हन एक रात की, इस फिल्म से है ये गाना. और इस फिल्म, इस गीत का जो म्यूज़िक है वो है मदन मोहन जी का. और आपको बता दें कि राजा मेहदी अली खान जी एज अ लिरिसिस्ट और म्यूजिशियन मदन मोहन जी, इन्होंने कमाल के गाने यू नो कंपोज किए हैं. इनकी जुगलबंदी कमाल की है, और उसी जुगलबंदी का एक ये जीता जागता मास्टरपीस ये गाना एग्जांपल. तो चलिए फिलहाल के लिए हम चलेंगे इसी सॉन्ग की तरफ. सुनते रहे एफएम रेनबो 101.9. और आपको बता दें दोपहर के 12 बजे हम आपको लिए चलेंगे न्यूज़ की तरफ. तो फिलहाल के लिए सुनिए ये खूबसूरत सा गाना. एंड आई होप सरवर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जी हाँ, उनके लिए भी ये गाना स्पेशली.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

0: उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रतापराव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ. जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है, साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्ने ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुभा रोहतगी। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said tax administrations are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digitally mediated systems. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns Real-time invoice authentication and AI-enabled taxpayer assistance has generated interest among the BRICS partners. The minister identified three broad areas emerging from the BRICS tax track this year, which are technology, administration and people.
3: Look at what has emerged from the BRICS tax track this year. Technology, the use of data and digital infrastructure to make tax administration more precise, more accessible and less dependent on the discretionary powers of individuals. Administration, the governance structures, the shared standards and the practical tools that give a cooperation like ours a durable institutional shape.
2: The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has called for greater cooperation among global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. He said global South countries should work together to address key challenges, including supply chain, finance and connectivity bottlenecks.
4: We can see that in conflicts and geopolitical tensions, in the disruption of supply chains, in increasing trade barriers, fragmented investment flows, climate shocks, and the fact that international law and rules are under great pressure.
2: President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat today. During the ceremony, the president will confer degrees on more than 12,600 students. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. The Ayushman Bharat, the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, has completed 8 years today. Prime Minister Narendra Modi had launched this scheme in September 2018 from Ranchi, Jharkhand, which has become the world's largest government-funded health assurance scheme. Prime Minister Modi said that the scheme has enabled record savings on medical expenses and benefiting the poor and middle class. The 11th Ayurveda Day is being observed today. The Ministry of Ayush is hosting an event at Nagpur in Maharashtra under the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow. The ministry said Ayurveda institutions, practitioners and stakeholders are participating in the celebrations from across India and worldwide. A deep depression over the west central and adjoining northwest Bay of Bengal is moving west-northwestwards and is lying about 150 kilometers south-southeast of Gopalpur in Odisha. It is expected to cross the coast between Visakhapatnam and Gopalpur tonight. Due to the weather system, the IMD has forecast very heavy rainfall over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. At the Asian Games, the Indian trio of Maheshwari Singh, Parinaz Dhaliwal and Raisa Dhillon secured the bronze medal in the women's team skeet shooting event at Aichi, Nagoya, taking country's overall medal tally on day 4 to 8. In another feat, Jaimina made history in soft tennis, assuring the country its first ever medal in the sport. Jay has advanced to the semifinals, defeating Sherwin Nuguit of the Philippines 4-3 in a closely fought quarterfinal. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% higher in the forenoon session today. The Sensex gained 355 points to 74,884, while the Nifty rose 110 points to 23,439 when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.

नमस्ते, हेलो, आदाब दोस्तों. आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो 101.9 के साथ. मैं हूँ निशा आपके साथ, और दोपहर के 12:11 यानी एक बार फिर से हम हाजिर हैं नमस्ते हेलो आदाब के एक और सेगमेंट के साथ. और यहाँ भी ढेर सारे सॉन्ग्स होंगे आपके साथ और कुछ बातें. और जैसा कि मैंने आपको बताया, आई विल बी प्लेइंग अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड वेस्टर्न हिट्स. सो इन्जॉय, जहाँ कहीं भी हो, जहाँ से भी सुन रहे हो हमें. और आपको बता दें, वैसे तो आपको बहुत बार हमने बताया ही है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो शो है, यानी कि FM रेनबो, अगर आपके साथ साथ चले, यानी बैकग्राउंड में कुछ हल्का ट्यून बजता रहे, कुछ गाने बजते रहे, तो आपको करना बस ये है कि अपने रेडियो को कहीं लेकर नहीं जाना है. जी हाँ, ऑब्वियसली रेडियो को लेकर हर जगह नहीं जाते. तो करना बस ये है कि न्यूज़ ऑन एयर ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, और वहाँ पर हमारा चैनल FM रेनबो हैदराबाद आपको मिल जाएगा, और वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं. और जहाँ कहीं भी हो, दुनिया के किसी कोने से भी आप हमसे जुड़े रह सकते हैं. फिलहाल के लिए तो जुड़े हुए हैं, तो आपको बता दूं कि अगर कोई मैसेज है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 4023234822. एंड यस, ढेर सारी बातें करेंगे और कुछ सॉन्ग्स हैं जो मैं आपके लिए प्ले करना चाहूँगी. तो पहला सॉन्ग जो मैं आपके लिए इस सेगमेंट में प्ले करूँगी वो है फ्रॉम द फिल्म द डर्टी पिक्चर से. सुनते रहिए, ये है FM रेनबो 101.9, और जहाँ कहीं भी है, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन्जॉय कीजिए इस सॉन्ग को, अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो.

Dear listeners, you are tuned into Akashvani Hyderabad, FM Rainbow 101.9. शो चल रहा है. नमस्ते, हेलो, आदाब. और जैसा कि हर सेगमेंट में थोड़ी सी बातें और थोड़े से सॉन्ग्स होते हैं आपके साथ, तो फिलहाल सॉन्ग्स तो काफ़ी सारे आपने सुन लिए हैं. फिलहाल चलते हैं थोड़ी बहुत बातों की तरफ. सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार. एंड दोस्तों, अब हम बात करते हैं ना एक ऐसे लैंग्वेज की जो शायद हमारी आवाज़ से नहीं लेकिन हमारे हाव भाव, एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स के थ्रू दिल तक पहुंचती है, और ये है साइन लैंग्वेज. और इसकी बात इसलिए बिकॉज 23rd of September इज़ ऑब्जर्व्ड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस. लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइन लैंग्वेज सिर्फ कुछ गेस्चर्स का कलेक्शन नहीं है? साइन लैंग्वेजेस आर एक्चुअली फुल फ्लेज्ड नेचुरल लैंग्वेजेस विद देयर ओन स्ट्रक्चर एंड ग्रामर. और दुनिया भर में डिफरेंट कम्युनिटीज़ अपनी अपनी नेशनल साइन लैंग्वेजेस यूज़ करती हैं. तो आज के दिन का एक इम्पॉर्टेंट यू नो मैसेज है, और वो ये है दैट कम्युनिकेशन इज़ अ बेसिक ह्यूमन राइट. कम्युनिकेशन सबका हक है. इमेजिन कीजिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, स्कूल में हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या सिंपली किसी से अपनी बात शेयर करनी हो, और आपके पास कम्युनिकेट करने का कोई रास्ता ही ना हो, तो कैसा लगेगा, है ना? इसीलिए हर किसी के लिए उनके अपने अपने हिसाब से लैंग्वेजेस बनाई गई हैं, और अपने अपने हिसाब से हम अपनी लैंग्वेज चुनते हैं. और इसीलिए दोस्तों, बहुत सारे लोगों के लिए साइन लैंग्वेजेस को प्रमोट करना सिर्फ कम्युनिकेशन को ईजियर बनाना नहीं है. इट्स अबाउट क्रिएटिंग इक्वल एक्सेस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड इक्वल पार्टिसिपेशन. और आज के दिन से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है दैट 23rd September इज़ वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ है. इसी दिन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ की फाउंडेशन हुई थी बैक इन 1951. इनफैक्ट 2026 मार्क्स इट्स 75th एनिवर्सरी. तो आज के दिन दोस्तों, शायद हम सब एक छोटा सा स्टेप ले सकते हैं. मे बी लर्न अ फ्यू बेसिक साइंस, मे बी अ लिटिल मोर पेशेंट व्हेन कम्युनिकेटिंग, मे बी मेक श्योर दैट इन्फॉर्मेशन अराउंड अस इज एक्सेसिबल टू एवरीवन. हर किसी को हमारी बात समझ में आनी चाहिए, और किसी के लिए अगर साइन लैंग्वेज यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है तो ऑफकोर्स अगर आपको आती है तो ज़रूर करें. बिकॉज इंक्लूजन का मतलब सिर्फ किसी को अपने साथ खड़ा करना नहीं होता है. इंक्लूजन ऑल्सो मीन्स मेकिंग श्योर दैट एवरी वन हैज़ अ वे टू बी हर्ड, अंडरस्टूड एंड इंक्लूडेड. सो ऑन दिस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, लेट्स रिमेंबर दैट लैंग्वेज कैन बी स्पोकन, रिटन और साइन, बट द राइट टू कम्युनिकेट बिलोंग्स टू एवरी वन. और शायद आज का हमारा छोटा सा मैसेज यही है दैट डोंट जस्ट लिसन टू वॉइसिस, लर्न टू अंडरस्टैंड हैंड्स, एक्सप्रेशंस एंड silence too. So yes, this is Nisha reminding you that communication creates connection and inclusion makes that connection possible for everyone. So happy International Sign Languages Day. एंड यस, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. और आपको बता दें, एट 12:30 यू विल बी लिसनिंग टू एन अपडेट अबाउट द 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान. एंड दिस अपडेट विल बी गिवन टू यू बाय द बाई आकाशवाणी दिल्ली. सो यस, कंटिन्यूइंग, चलते हैं कुछ सॉन्ग्स की तरफ. और जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ वो है फ्रॉम द फिल्म गुलाम. आई होप कि आपको पसंद आए. सुनते रहिए, ये है फिल्म रेनबो 101.9.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ दोस्तों इस वक्त मौजूद हैं शाहिद आजमी एंड वी ब्रिंगिंग यू द लेटेस्ट अपडेट्स एट घड़ी में बज गए हैं 12:30 और आपको हम देने वाले हैं कि एशियन गेम्स 2026 की पिछले एक घंटे में क्या क्या इवेंट्स में क्या क्या घटित हुआ है। तो सबसे पहले बड़ी खबर आपको ये देते हैं वेट लिफ्टिंग की दुनिया में, जहां मीराबाई चानू ने कमाल कर दिया। जी हाँ, शी हैज ब्रॉट इंडिया द कोवेटेड सिल्वर। उम्मीद तो उनसे गोल्ड की रखी गई थी, लेकिन सिल्वर पदक यानी सिल्वर मेडल भारत के लिए वो लेकर आ गई। इस वक्त शी वॉज एबल टू पुट इट ऑन अ टोटल ऑफ 198 kgs, विच वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर बेस्ट लिफ्ट फ्रॉम स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। 198 किलो उठाने के बाद उनको आज यहां पर हमने देखा सिल्वर मेडल से नवाजा गया। आपको ये भी बता दें कि वेट लिफ्टिंग मेडल भारत के नाम 28 साल बाद आया, इसलिए एक हिस्टोरिक मेडल है। और उसके साथ ही साथ मीराबाई चानू के लिए ये उनका पहला मेडल है किसी भी रूप में एशियन गेम्स के अंदर। शाहिद
2: जी बिल्कुल, इसी मेडल से उनकी झोली खाली थी। मेरा भाई चानू कर्णम मले

0: ऐश्वरी के बाद दूसरी भारतीय वेटलिफ्टर बन गई जिन्होंने ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सभी इन तमाम बड़ी प्रतियोगिताओं में पदक जीता है। आज वेटलिफ्टिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है। जी हाँ, चीन की सॉन्ग गुम ने क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 215 किलोग्राम के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है।
1: राइट, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू कबड्डी, जहां पर हमने देखा कि भारतीय महिलाओं ने ईरान को 37-23 से हरा दिया कबड्डी वुमेन्स टीम ग्रुप ए में, और इसके बाद उन्होंने अपनी जगह, मतलब दोनों ही टीमों ने, क्योंकि ये चार चार अंकों पे इस ग्रुप में आके एक साथ टाइड हो गए, तो दोनों ही टीमों ने अपनी जगह सेमीफाइनल बना ली है। वहीं मेन्स कबड्डी की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हमने देखा कि किस तरह से भारतीय मेन्स कबड्डी टीम ने बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरीके से दबदबा जारी रखा और 48-25 से बांग्लादेश को भी हरा दिया। अब नेक्स्ट भारतीय मेन्स कबड्डी टीम इज गोइंग टू बी अप अगेंस्ट चाइनीज तेपाई इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम।
0: जी साक्षी, एक और शूटिंग से खबर दे देते हैं, जहां थोड़ा सा उम्मीद थी वो उम्मीद मध्यम पड़ गई। महिलाओं के स्कीट इवेंट में राजा ढिल्लो के बाहर होने के साथ ही भारत की पदक की उम्मीदें समाप्त हो गई। राजा चौथे स्थान पर रही थी, इस वर्ग का गोल्ड चीन की जियांग इतिंग ने जीता। वहीं रजत पदक थाईलैंड और कांस्य पदक कजाकिस्तान की शूटर ने अपने नाम किया है।
1: Right, and a quick update to be coming from the world of hockey also, where we carry on to see India's domination on Thailand. India presently leading with 13 goals, whereas Thailand has not even been able to open their account in this game in the name of goals. Bharat ki taraf se Deepika, Lal Rem Siami, Sakshi Rana, Pisal Rutuja aur Navneet Kaur, kuch aise naam rahe jinhone Bharat ko aaj goals karke is match mein diya hai. Aur jis tarah se ye match ja raha hai, ummeed yehi karenge ki Bharat ko isko bahut comfortably in a dominating manner जीत लेना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, विश्वास की बात की तो विश्वास की बात करते हैं। एशियन गेम 2026 में भारतीय स्क्वैश की, जी हाँ, अभय सिंह ने पुरुष एकल में शानदार आगाज किया। उन्होंने थाईलैंड के अरकादेत को लगातार 3 गेमों में 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। अभय सिंह अब राउंड ऑफ 16 में कल श्रीलंका के रविंदु के खिलाफ खेलेंगे। खास बात यह भी बता दें कि एशियन गेम्स से एले 28 यानी 2028 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है, उसके लिए स्क्वैश के लिए कोटा स्थान भी जुड़ा हुआ है। उधर तन्वी खन्ना ने दक्षिण कोरिया की डामी किम को सीधे गेमों में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है।
1: Right, and let's not forget the one of the best news जो आज हमें दिन की शुरुआत में मिली थी, जय मीना सेन सॉफ्ट टेनिस, who created history by winning India's first ever medal in soft tennis at the Asian Games. Yes, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करवाया। वो हार गए थे ताकुया कुरोसाका से 2-4 इन द सेमीफाइनल, लेकिन फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट है, क्योंकि भारत को आज से पहले कभी भी सॉफ्ट टेनिस में कोई भी मेडल नहीं मिला है, और वो ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए भारत के लिए जिन्होंने सॉफ्ट टेनिस में एशियन गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया।
0: जी बिल्कुल, इधर रोइंग की तरफ चलते हैं। लाइटवेट पुरुष डबल स्कल्स हीट में उज्जवल कुमार सिंह और रोहित चौथे स्थान पर है और फाइनल ए के लिए क्वालिफाई कर लिया है। लाइटवेट पुरुष सिंगल्स स्कल्स हीट में अजय त्यागी चौथे स्थान पर है, अब वो फाइनल में बी यानी फाइनल बी में हिस्सा लेंगे।
1: Right, and a quick update from the world of boxing also, ki Ankush Pangal has advanced to the round of 16 with a convincing 5-0 unanimous decision victory over Hamsa Vogel. Aapko bata de ki Ankush was able to completely dominate and command his opponent in this game. Ji.
0: जी, चलते थे आपको बता दें टेबल टेनिस से खबर। हरमीत देसाई शशिनी घोरपड़े ने मिक्स डबल्स के राउंड ऑफ 2 में मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातिमित अली को 3-2 से हराकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है।
1: राइट, एंड अ वेरी क्विक अपडेट बिफोर वी लीव फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट के साथ आप लोगों के साथ बता दें कि मेडल टैली में भारत की पोजीशन अभी 9वें स्थान पर है। कुल मिलाकर भारत के अब मेडल्स हो चुके हैं 11, जिसमें से एक गोल्ड है जो हमें क्रिकेट की दुनिया से आया, 5 सिल्वर है, 4 शूटिंग में से और 1 वेटलिफ्टिंग में जो आज मीरा भाई चानू लेकर आई, 5 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं जो इसमें से 4 शूटिंग में आए हैं, 1 मिक्स मार्शल आर्ट से आया है और तीसरा जो कहते हैं ना ब्रॉन्ज, वो सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से आया है, मेकिंग इट टोटल ऑफ राइट नाउ 5 ब्रॉन्ज मेडल्स फॉर इंडिया। सो दैट पुट्स आवर टोटल टैली एट 11 मेडल्स एंड वी आर ऑन द 9th पोजीशन। उम्मीद करते हैं कि भारत यहां से और धीमे धीमे करके ऊपर चढ़ेगा और मेडल्स आते रहेंगे। फिलहाल के लिए मुझे यानी साक्षी मांडवाल और शाहिद को दीजिए इजाजत। आपसे जुड़ेंगे दोस्तों 1 घंटे बाद एक बार फिर से आकाशवाणी के माध्यम से, ब्रिंगिंग यू द लाइव अपडेट्स ऑफ द ऑनगोइंग एशियन गेम्स। थैंक यू।

0: Well, that was the soulful Dil Ka Rishta sung by Alka Yagnik, Udit Narayan and Kumar Sanu with music by Nadeem Shravan. A song that beautifully speaks about emotions, connection and those bonds that stay with us forever. जी हाँ, रिश्ते हमारे जीवन की वो फसलें हैं जिन्हें ऐसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से सींचा जाता है वो उसी के अनुसार पैदावार देते हैं. हालांकि ये ज़रूर है कि उनमें गम और खुशी के मौसमों की मार अक्सर पड़ती रहती है, लेकिन बावजूद इसके ज़रूरी ये है कि उनकी हिफाजत की जाए. और वो क्यों पता है? क्योंकि रिश्ते सिर्फ बनाए नहीं जाते, निभाए भी जाते हैं. कभी थोड़ा वक्त देकर, कभी किसी को थोड़ा समझकर, और कभी सिर्फ चुपचाप किसी के साथ खड़े रहकर. बड़े खूबसूरत होते हैं दोस्तों ये रिश्ते, जो कभी हमारी ताकत बन जाते हैं, तो वहीं कुछ रिश्ते हमें ज़िंदगी को बेहतर तरीके से समझना भी सिखा देते हैं. और सच कहूँ तो दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग शायद यही है कि कोई बिना कहे भी आपको समझ ले. सो इफ देर इज़ समवन इन योर लाइफ हु ट्रूली केयर्स फॉर यू, देन प्लीज़ डोंट वेट फॉर अ स्पेशल ओकेजन टू वैल्यू देम. बिकॉज समटाइम्स यू नो, मे बी अ सिंपल कॉन्वर्सेशन, अ स्मॉल एफर्ट और इवन अ हार्ट फेल्ट हाउ यू कैन कीप रिलेशनशिप्स वार्म एंड अलाइव. तो जी हाँ, अगर अपने रिश्तों को बचा कर रखना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि कभी भी कम्युनिकेशन गैप ना आए किसी भी रिश्ते में. और हम भी यही करते हैं. हम कभी भी आपके साथ जो रिश्ता हमने बनाया उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं आने देते, और इसलिए तो हम आपसे बातें करते ही रहते हैं. खैर दोस्तों, इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए हम चलेंगे एक सॉन्ग की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश. सुनते रहिए, ये है एफएम रेनबो 101.9.
1: నేహా, ఈ మధ్య నువ్వు చాలా రిలాక్స్డ్ గా కనిపిస్తున్నావు. ఎల్ఐసి యొక్క బీమా లక్ష్మి ప్లాన్ తీసుకున్నాను. చిన్న మొత్తాల పొదుపు పెద్ద రాబడిగా మారుతుంది. మనకి ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ కూడా ఉంటుంది. గ్యారంటీడ్ అడిషన్స్, 3 ఆకర్షణీయమైన ఆప్షన్స్ తో అడిషనల్ సర్వైవల్ బెనిఫిట్, ఇందులో ఆటో కవర్ కూడా.

1:05, जी हाँ, दोपहर का वही समय जब आप हमसे जुड़ते हैं हेलो रेनबो के साथ। दोस्तों, आप जुड़े हुए आकाशवाणी हैदराबाद FM रेनबो के साथ, मैं हूँ निशा आपके साथ। एंड यस, 1:05 यानी शुरुआत होने जा रही है हेलो रेनबो की, और आज भी हर रोज़ की ही तरह आपका स्वागत है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं हम सभी नोटिस करते हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक चीज़ जो आज के दिन को स्पेशल बना रही है, यानी आज के दिन को, या फिर कह लीजिए आने वाले 2-3 दिनों को, और पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते एक स्पेशल चीज़ चल रही है।

0: थी, और वो है गणेश जी का आगमन हमारे घरों में, हमारे शहर में, है ना। और उसी के बारे में आपसे कुछ कहना है दोस्तों, और उस बारे में बहुत सारी बातें लेकर आपके साथ जुड़ेंगे आरजे जेडी, वो भी 25 सितंबर को।
1: जी हाँ दोस्तों, अरे यार निशा कितनी अच्छे हो यार आप, मेरा शो को प्रमोशन कर रहे हो आपके
0: जी
1: शो में।
0: बिल्कुल, अच्छी तो हूँ मैं, और इसीलिए मैंने सोचा कि हमारे लिसनर्स हमसे जुड़े हुए हैं, तो क्यों ना उन्हें बता दे कि बहुत सारी बातें होने वाली है गणेश विसर्जन के बारे में 25 सितंबर को, जो कि आप खुद करने वाले हो।
1: डेफिनेटली, क्योंकि हैदराबाद के अलग अलग गणेश आइडल्स और पंडाल और इंडिया के इम्पोर्टेंट गणेश आइडल्स और उसमें उनसे जुड़ी परंपराएं, गणेश महोत्सव का इतिहास और खास तरह पर के उनके पकवान।
0: जी हाँ, बप्पा के जो प्रसाद होते हैं ना, वो बहुत टेस्टी होते हैं, खास करके जो बप्पा का स्पेशली प्रसाद है मोदक, वो तो हम
1: बिल्कुल
0: चखते ही हैं। लेकिन जो प्रसाद हमें जब हम घूमने जाते हैं, पंडाल घूमने जाते हैं, आइडल्स देखने जाते हैं, तभी हमें काफ़ी प्रकार के प्रसाद खाने को मिलते हैं, और उसी बारे में आई थिंक आरजे जेडी भी बताएंगे आपको।
1: डेफिनेटली, मैं मुझे तो बहुत इंतजार हो रहा है उस दिन का,
0: जी
1: आई
0: हाँ
1: होप हमारे लिसनर्स को भी,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इन लोगों को, हर हर चीज हैदराबाद का मतलब गणेश महोत्सव से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट देने में।
0: जी, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडल्स, पंडाल्स जो भी बने हुए हैं, वैरायटीज है बहुत सारी, और स्पेशली बप्पा के प्रसाद की वैरायटीज के बारे
1: जी
0: में
1: हाँ,
0: भी
1: और
0: उस दिन हम
1: निशा
0: जानेंगे।
1: गेस व्हाट,
0: बताइए क्या।
1: उस दिन बजेंगी बप्पा की गाने।
0: वाह क्या बात है, मतलब सारे के सारे बप्पा के गाने,
1: जी हाँ,
0: वाह।
1: धूमधाम, क्योंकि हमारे बप्पा जी अभी अपने घर लौटने वाले हैं, तो थोड़ा तो बनता है।
0: ओके, तो जी हाँ, यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, और उसके लिए स्पेशली जेडी आज यहाँ पर हमारे साथ थे आपको बताने के लिए दैट 25 सितंबर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक गणेश विसर्जन स्पेशल विथ आरजे जेडी। जी हाँ, जहाँ पर सिर्फ बप्पा के गाने बजने वाले हैं, तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया। वेल दोस्तों, फिलहाल के लिए तो हेलो रेनबो के साथ हैं आप, और आज आपसे बस यही पूछना चाहूँगी कि क्या कभी आपने नोटिस किया है कि हमारी लाइफ में हर चीज के लिए एक जल्दबाजी सी बनी रहती है ना, हम हर चीज को लेकर जल्दबाजी करते हैं। सुबह अलार्म बजते ही जल्दी उठो, ब्रेकफास्ट जल्दी करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं ना, जल्दी चलो, ट्रैफिक में जल्दी पहुंचो, सामने वाला चाहे उसकी सिचुएशन कुछ भी हो, गाड़ी आगे बढ़ने वाले पोजीशन में हो या ना, हम हॉर्न बजाते रहते हैं। काम खत्म करके जैसे ही काम खत्म होता है, हमारा नेक्स्ट टास्क रेडी होता है, और घर अक्सर जो है ना हम पहुंचते हैं, तब फिर से ईमेल्स, मैसेजेस और रील्स के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, है कि नहीं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं वी आर ऑलवेज रशिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग, और इसीलिए ये सवाल है आपसे आज कि क्या आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी में जी रहे हैं। तो इस बारे में आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं अपना जो व्यू है, जैसी लाइफ अभी आप जी रहे हैं, क्या आप थोड़ी स्लो लाइफ चाहते हैं या फिर इसी स्पीड में चलना चाहते हैं, तो उस बारे में आप हमें शेयर कर सकते हैं, और उसके लिए हम आपसे जुड़ने वाले हैं थोड़ी ही देर में। उससे पहले एक छोटा सा संदेश।
2: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026లో భాగంగా డ్రాఫ్ట్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటరు నమోదు చేసిన దానికి ఫామ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫామ్, అభ్యంతరాలకు ఫామ్ 7, సవరణలకు ఫామ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 15 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ఈఆర్ఓ, ఏఈఆర్ఓ లేదా డిఎల్ఓ కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ వారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
0: जी हाँ, हेलो रेनबो के साथ जुड़े हुए हैं आप, मैं हूँ निशा आपके साथ, और आज का जो छोटा सा सवाल है वो यही है कि क्या आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी में जी रहे हैं, हर चीज़ को जल्दी करने की होड़ लगी हुई है कि नहीं, और उसमें बहुत कुछ पीछे छूट जा रहा है, तो क्या क्या पीछे छूट जा रहा है ये भी ज़रा बताइएगा, और कितनी जल्दी में हैं आप, है ना, वो भी बताइएगा। वेल, हमारे जो फर्स्ट कॉलर है उनसे जुड़ते हैं, आइए जानते हैं कि उनकी क्या राय है इस बारे में। हेलो रेनबो। हेलो,
3: हेलो रेम्बो, गुड आफ्टरनून, आदाब निशा जी.
0: गुड आफ्टरनून आदाब शेर खान जी, कैसे हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी।

0: दुआएं अल्लाह का शुक्र है, और सभी सुनने वाले भाई बहनों दोस्तों को प्यार भरा सलाम आदाब।
1: चलिए, बहुत अच्छी
0: अल्लाह
1: बात
0: आप
1: है।
0: तो सभी को खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद रखे, और हमारे
1: शुक्रिया।
0: जेडी साहब को भी मेरा प्यार भरा आदाब।
1: ओके, शुक्रिया शुक्रिया। और बताइए, सबसे पहले तो बताइए कि कैसे हैं आप।

0: लाइफ में चल रहा होता है उसे एक्चुअली इंजॉय करना भूल जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल वही हो रहा है आजकल। जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है वैसे हमारी लाइफ भी एडवांस हो गई है।
0: जी
1: हम
0: जी
1: उससे आगे निकलने की कोशिश, उसके साथ भी नहीं चल रहे, उससे आगे निकलने की कोशिश में रहे। हम वक्त के साथ सब करेंगे तो फिर सब कुछ ठीक रहेगा। हाँ, वक्त की कदर कीमत करेंगे, सबसे महन अहम जरूरी जो भी है तो वो हमारा वक्त है, और वक्त के साथ हम सब कुछ करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। वक्त के साथ चलेंगे तो अब वक्त को पीछे छोड़ेंगे, फिर वक्त से आगे दौड़ने की कोशिश करेंगे, या वक्त को आगे रहेंगे उसके पीछे जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमारी ये चलने वाला है, भागा दौड़ी ही चलने वाली है। ना हम वक्त के रहेंगे ना हम खुद के रहेंगे।
0: और एक चीज ये भी है कि आजकल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है वही पीछे छूट जा रही हैं इस भागा दौड़ी
1: बिल्कुल
0: में।
1: बिल्कुल वही वो हम अपने आप को भूल जा रहे हैं,
0: हाँ,
1: अपने
0: हम
1: आप
0: अपने
1: लोग
0: आप
1: को
0: को
1: तो
0: भी
1: भूल
0: भूल
1: गए,
0: जा रहे हैं।
1: आप
0: बिल्कुल
1: लोग को तो
0: बिल्कुल।
1: भूल गए हम ये मोबाइलों से, ये कंपटीशन से, पता नहीं क्या क्या चीजें, आप लोगों को तो भूल गए लेकिन हम खुद को भी भूल जा रहे हैं। हमको क्या, हम खुद का भी ख्याल नहीं रख पा रहे हैं आज के दौर में।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी,
0: सही कहा
1: और
0: आपने।
1: बहुत जल्दबाजी है ये, तो हमको वक्त की कदर कीमत करना चाहिए, वक्त के साथ चलना चाहिए, और बहुत सारी पीछे पहले जो नेचुरल कुदरती जो चीजें थी वो हमसे पूरी छूट गई है। जी
0: ओके, चलिए, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी हमारे मुमताज बाजी को भी सलाम है, और निशा जी एक सॉन्ग की फरमाइश है अगर हो तो आप सर्च कर
0: अच्छा,
1: दीजिए,
0: बताइए बताइए।
1: समझौता फिल्म है, समझौता मूवी का टाइटल सॉन्ग, समझौता गमों से कर लो, किशोर कुमार की आवाज में।
0: ओके, मैं
1: अगर
0: कोशिश
1: ये ना
0: करूंगी।
1: हो तो फिर एक लता जी की आवाज में है, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई।
0: वाह, क्या बात है। ओके, मैं कोशिश करूंगी। ओके, थैंक यू सो
1: ओके
0: मच
1: निशा
0: कॉल
1: जी,
0: करने के
1: आपका
0: लिए, बहुत बहुत
1: शुक्रिया,
0: शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया
0: और
1: जी,
0: मुमताज़ बाजी को भी मेरा सलाम। ओके, थैंक यू
1: मेरा भी
0: थैंक यू।
1: सलाम। ओके
0: तो जी हाँ, ये थे शेर खान जी, और आई थिंक हमारे कुछ और कॉलर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से संदेश की तरफ चलेंगे। सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।
2: ईरानी चाय,
3: बन मस्का,
2: हैदराबादी बिरयानी,
3: टंग दी कबाब,
2: कुर्बानी का मीठा,
3: शहदूद मलाई,
2: हैदराबाद इज अ ग्रैंड बफे
3: एंड एवरी डिश हैज अ स्टोरी वेटिंग टू बी टोल्ड।
2: एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई जश्ने हैदराबाद इज योर आफ्टरनून ट्रीट
3: फ्रॉम 2 to 3 PM एवरी डे ऑन FM रेनबो 101.9।
2: इट्स नॉट जस्ट फूड,
3: इट्स कल्चर, हिस्ट्री एंड फ्लेवर रोल्ड इनटू वन। जश्ने हैदराबाद।
0: FM रेनबो 101.9, आकाशवाणी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं आप, और हेलो रेनबो का सफ़र जारी है। मैं हूं निशा आपके साथ, और आप जहां कहीं भी होंगे उम्मीद है कि मुस्कुरा रहे होंगे, है कि नहीं? क्योंकि हेलो रेनबो से जुड़े हुए हैं तो ऑफ कोर्स मुस्कुराहट तो अपने आप चेहरे पे आ ही जाती होगी, है कि नहीं? और थोड़ी बहुत थकान भी आ जाती होगी, कॉल्स लगाते रहते आप, है कि नहीं? एक बार तो नंबर लग जाए और बात हो जाए, सब तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, है कि नहीं? एंड यस, आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी सभी तक। मैं कुछ ही देर में अपने नेक्स्ट कॉलर से जुड़ने जा रही हूँ, और आज का मेरा सवाल था कि क्या आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी में जी रहे हैं, है कि नहीं? बहुत सारी पीछे छूट जा रही हैं चीज़ें इस भागा दौड़ी में। जैसे कि देखिए, हम खाना खा रहे होते हैं लेकिन फ़ोन देख रहे होते हैं, कि नहीं? क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है हमसे मिस हो जाए, तो फोन भी देखते रहते हैं। किसी से बात कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग में नेक्स्ट काम चल रहा होता है कि नहीं? वीकेंड का वेट करते हैं और वीकेंड आते ही सोचते हैं मंडे इतनी जल्दी कैसे आ गया, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग एक टाइम पे कभी कभी ना दो दो काम कर रहे होते हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि दोनों ही काम आधे अधूरे रह जाते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट रही है इस भागा दौड़ी में। आई थिंक आपके भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होंगे, आपका क्या कहना है इस बारे में मैं जानना चाहूँगी। एंड जुड़ने के लिए सबसे पहले तो हमारे नंबर्स बता दूंगी। हमारे 3 नंबर्स हैं जिन पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहला है 0402323-0030, दूसरा है 0402323-4821, और तीसरा है 0402970-4715। तो इन तीनों ही नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे नेक्स्ट कॉलर, हेलो रेनबो, हेलो,
4: मैडम,
0: हाँ जी, नमस्कार,
4: मैं रेडियो शौकीन था।
0: हाँ जी, बहुत दिनों बाद आपसे बात हो रही है,
4: जी हाँ मैडम, मैं
0: हेलो।
4: करता मैं।
0: हेलो, हाँ जी, आप
4: होते रहते
0: आवाज, आपकी आवाज जो है ना

0: वो कट कट के आ रही है।
1: जी हाँ, कट कट के आ रही है। और ये जल्दबाजी का दौर ऐसा हो गया, मैं कितना दिन जाके होटल में लाइन में ठहर रहे, इतने बिजी हो गए लोग, इतना वक्त नहीं है लोगों के लिए। और मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 14 साल 15 साल के बच्चों को चांदी के हो जा रहे हैं, आंखों में मोतिया आ जा रहे हैं, किडनी में खिलती पर आजकल ऐसा हो गया मामला। अब हमारा तो मामला ऐसा है, दिल के अरमां हाथों में नहीं बहाते हैं, अपने आप को बखने दिए तो वो दिन नहीं देना जरूरी है,
0: ओके
1: अपना दिल जो बोला वो कर लेना बोल के हमारी ऐसी सोच रहती मैडम। हमारे सेठ वही तरबियत सिखाए हमारे को, पाबंदी वक्त घड़ी पे नजर रहती थी, 9:05 के बाद, 9:10 के बाद आए तो बढ़ा देते थे काम पे, समय काम पे। वो बचपने से वही ट्रेनिंग दी हमारे सेठ, आज भी हमारे पास प्यालिया
0: जी
1: वैसा है मामला। जल्दबाजी करने से नुकसान है मैडम, जल्दबाजी का काम जिंदगी बहुत कीमती है, वक्त से ज्यादा जिंदगी कीमती है, उसके लिए जिंदगी खत्म नहीं कर लेना, मेरा ऐसा मानना है।
0: ओके चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया
1: क्या
0: कॉल
1: जिंदगी
0: करने
1: कितनी
0: के लिए।
1: आती है,
0: हाँ
1: शुक्रिया
0: जी,
1: आपका बहुत बहुत, थैंक यू।
0: थैंक यू सो मच, बहुत दिनों बाद बात हुई, अच्छा लगा। ओके शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी भाग दौड़, कितनी भी अफरा तफरी क्यों ना मच जाए लाइफ में, अपने आप को कभी मत भूलिएगा। और हमारे लिसनर्स भी हमसे यही कह रहे हैं कि वक्त को पीछे छोड़ने की जो कोशिश है वो तो कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमेशा से वक्त ने ही हमें पीछे छोड़ा है ना, वक्त को हम कभी पीछे नहीं छोड़ सकते। एंड जो भाग दौड़ की बात रही, तो जितना भी भाग दौड़ करना है कर लीजिए, लेकिन अपने आप को मत पीछे छोड़िए, अपने आप को मत भूलिए उस भाग दौड़ में। काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि आप कभी अकेले में खड़े होकर बैठकर, जो भी अकेले में जब शांत होंगे, तो सोचिएगा कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कभी पसंद हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में आप भूल चुके हो कि वो चीज़ें मुझे कभी पसंद हुआ करती थी। आप अपनी हॉबीज तक भूल गए हो, आपको किस चीज़ में सुकून मिलता था, किस चीज़ को कर कर, वो चीज़ आप भूल गए हो। उस चीज़ को करने का आपको टाइम नहीं है ना, काम के पीछे आप इतना भाग रहे हो कि आपके पास उतना टाइम नहीं है कि पसंदीदा चीज़ों को आप कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, और इसी बारे में हमारे कुछ लिसनर्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कहना चाहते हैं कुछ इस टॉपिक पर। वेल, हमारे कुछ लिसनर्स हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पर, और अगर आप भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 4023234822। तो जो लोग भी हमारे साथ, सरवर अली जी, इमरान जी, अशोक जी, यहाँ पर अश्विन जी हमारे साथ, दीपू है हमारे साथ, तो आप सभी के मैसेजेस मैं शामिल करूंगी इस सेगमेंट में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा संदेश सुनते रहिए, ये एफएम रेनबो 101.9।
2: ఒక మంచి పుస్తకం మనకు ఒక కొత్త ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేస్తుంది,
3: ఒక కొత్త ఆలోచనను అందిస్తుంది,
2: ఒక కొత్త అనుభూతిని మనలో నింపుతుంది.
3: మరి మీకు నచ్చిన పుస్తకం, మీకు ఇచ్చిన ఆ అందమైన అనుభూతిని మా శ్రోతలతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నారా?
2: ఎఫ్ఎం రెయిన్బో మీకందిస్తున్న ప్రత్యేక అవకాశం రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
3: 15 నుంచి 25 ఏళ్ల మధ్య వయసున్న వారెవరైనా మీరు చదివిన పుస్తకం గురించి
2: మీ అనుభూతిని
3: మీ మాటల్లో
2: మా శ్రోతలతో పంచుకోండి.
3: మీ పేరు, మొబైల్ నంబర్ వివరాలను
2: రీడ్ విత్ రెయిన్బో 2026@gmail.com కు పంపండి.
3: మీ రీడింగ్ జర్నీ
2: మీ మాటల్లో మన శ్రోతల ముందుకు, పుస్తకంతో మీ ప్రయాణాన్ని
3: రెయిన్బోతో పంచుకోండి.
2: రీడ్ విత్ రెయిన్బో,
3: రీడ్ విత్ రెయిన్బో.
0: जी हाँ, हेलो रेनबो के साथ हैं आप, और आपकी उपस्थिति यहाँ पर मुझे दिख रही है। व्हाट्सएप पर भी आपके काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, तो उनको मैं फ़िलहाल के लिए शामिल करने जा रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमारे साथ हैं सरवर अली जी, तो आप हमसे जुड़े हुए हैं सुबह से, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कहते हैं कि गुड आफ्टरनून मैडम, मैं जहाँ भी जाता हूँ रेडियो मेरे साथ होता है। वाह, क्या बात है। तो वाकई में जो दिन है वो खूबसूरत बना रहता होगा, क्योंकि कुछ आवाज़ें सुनने को मिल जाती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन सुनने को मिल जाता है, कुछ खूबसूरत गीत सुनने को मिल जाते हैं बैकग्राउंड में, कुछ प्यारे प्यारे गीत बजते रहते हैं, उससे ज़्यादा और क्या ही चाहिए, है कि नहीं? एंड यस, हमारे साथ यहाँ पर हैं इमरान जी, जो लिखते हैं गुड आफ्टरनून, तो आपको भी अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी, तो आपको भी, एंड थैंक यू सो मच। देन हमारे साथ यहाँ पर अशोक जी हैं, ये लिखते हैं कि दिल क्यों महका रे महका आधी रात को, इस सॉन्ग को सुनना चाहते हैं ये, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। एंड यहाँ पर हमारे साथ हैं अश्विन जी, जिन्होंने अगेन एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है, लिखते हैं जय श्री कृष्ण, तो आपको भी जय श्री कृष्ण। एंड आप आए बाहर आए, हर रोज आप आते रहिए। वेल वैसे आप लोगों का भी यहाँ पे होना किसी बाहर से कम नहीं है, मैं बता दूँ। एंड यस, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे मिलती रहूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी। एंड इनकी भी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, उधर तुम हसीन, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है, तो मैं कोशिश करूँगी। एंड देन यहाँ पर हमारे साथ हैं दीपू फ्रॉम मेहदीपट्टनम, इन्होंने काफ़ी लंबा चौड़ा मैसेज लिख भेजा है, मैं पढ़ना चाहूँगी। हाय निशा जी, तो आपको भी हेलो। एंड लिखते हैं कि हैदराबाद में भयंकर ट्रैफिक है, जहाँ भी जाओ गणेश विसर्जन धूमधाम से चल रहा है, बहुत खूबसूरत व्यू है। एंड रही बात टॉपिक की, आजकल हम फास्ट फॉरवर्ड जिंदगी जी रहे हैं और एक हिसाब से गलत है, लेकिन एक हिसाब से सही भी है। सही इसलिए क्योंकि अगर हम फास्ट नहीं रहेंगे तो हम आज कल की जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। नाउ इट्स नॉट द टाइम टू हार्ड वर्क, नाउ इट्स नॉट द टाइम टू हार्ड वर्क, इट्स टाइम फॉर स्मार्ट वर्क। जी हाँ, सही कहा आपने। एंड एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है, मोहे भूल गए सावरिया बाई लता मंगेशकर, तो आप लोगों की काफ़ी सारी सॉन्ग रिक्वेस्ट है, उन्हें भी मैं प्ले करूँगी। एंड दीपू आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छा सा मैसेज है और सही बात कहा आपने कि इट्स टाइम फॉर स्मार्ट वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क से सिर्फ काम नहीं चलेगा, और कहीं ना कहीं हम अगर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क को अगर कंबाइन ना करें ना, तभी ऐसा होता है कि हमें अपने आप के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, और वहीं पे ऐसा होता है कि हम अपने आप को भूलने लग जाते हैं। तो अगर आप हार्डवर्क के साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं ना, तो 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हैं, और वो 1 घंटा जो आपके पास बचेगा वो 1 घंटा आप अपने आप को दे सकते हैं, ताकि ऐसी सिचुएशन कभी ना आए कि आपको अपने आप को भूलना पड़े, अपनी हॉबीज़ को भूलना पड़े, अपने रिलेशनशिप्स को भूलना पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रिलेशनशिप्स को मेंटेन नहीं करेंगे, उन्हें टाइम नहीं देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि वो रिलेशनशिप्स, वो लोग भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा ना रह जाए। खैर, हम तो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हर दिन रहने वाले हैं और आज भी हैं, हेलो रेनबो के साथ। और हमारे कुछ और लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, उनसे भी जुड़ेंगे एक छोटे से मैसेज के बाद। एंड आपको बता दें कि 12:30 पर आप सुन पाएंगे अपडेट्स अबाउट द एशियन गेम्स गोइंग ऑन। तो फिलहाल के लिए चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ, 1:30 पर अपडेट्स, लेकिन उससे पहले हम జుడేంగే ఏ కాలర్ కే సాత్
4: రాష్ట్రంలో ఓటర్ జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 లో భాగంగా డ్రాప్స్ ఓటర్ల జాబితాలో మీ పేరు ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోండి. ఒకవేళ జాబితాలో మీ పేరు లేకపోతే కొత్తగా ఓటర్ నమోదు చేసిన దానికి ఫార్మ్ 6 తో పాటు డిక్లరేషన్ ఫార్మ్, అభ్యంతరాలకు ఫార్మ్ 7, సవరణలకు ఫార్మ్ 8 ద్వారా ఆగస్టు 17 నుంచి అక్టోబర్ 7 లోపు ఆన్లైన్ లో voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ ద్వారా లేదా ఆఫ్లైన్ లో ERO, AERO లేదా BLO కు మీరు దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. వివరాలకు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు प्रधान एन्निकल अधिकारी तेलंगाना।
0: तो चलिए जुड़ते हैं एक और कॉलर से। हेलो रेनबो, हेलो हेलो रेनबो,
5: नमस्ते
0: नमस्ते नमस्ते, हाँ जी हेलो,
5: हैप्पी हैप्पी डे,
0: हैप्पी हैप्पी डे।
5: हाँ, दुनिया इस तरीके से तेज भाग रही है और ये अगना भी आज की सब जरूरत पड़ गई कि हर कोई अपने आप को इम्प्रूवमेंट में चाह रहा, तो जिंदगी का इम्प्रूवमेंट है ऐसा, और जो छूट जा रहा है वो आपस ही अनेकता में एकता छूट जा रहा है, मोहब्बत मगर इसको सबको लेके चलने की जिम्मेदारी हर इंसान की है, हर भारतवासी की है।
0: जी, जी।
5: और इस दिशा में हमारे अशोक गन्ना इस वर्ष गणेश यानी के लड्डू बांट रहे हैं।
0: वाह, क्या बात है,
5: मोहब्बत वाला पैगाम बांट रहे हैं। तो यही आदमी को चाहिए अपने संस्कार से, अपने भारत से, यही है ये नफरतों के जहान में प्यार की बस्तियां बसाना है, प्यार के लड्डू बांटना है, प्यार मोहब्बत बांटना है। ये हमारे अशोक गन्ना बहुत बेहतरीन अपनी योजना चलाते बोल सकता हूँ मैं।
0: जी जी जी,
5: मोहब्बत भरी योजना चलाना एक अच्छे किरदार की बात है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, आप इकबाल जी बोल रहे हैं ना?
5: जी हाँ जी हाँ, मैं
0: जी,
5: और मैं उनके लिए गाना गाना चाह रहा हूँ अच्छा करना के लिए, थोड़ा सा मुकड़ा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
5: मन क्यों बहका आधी रात को,
0: वाह क्या बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप कि अशोक जी भी सुन रहे हैं क्योंकि उनके काफी सारे मैसेजेस भी आए हुए थे, एंड वो आई होप कि वो जुड़े हुए हमारे साथ। ओके थैंक यू, थैंक यू कॉल करने के लिए। तो जी हाँ, ये थे हमारे कुछ कॉलर्स, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि 1:30 पर, यानी अब से कुछ ही देर में, आप सुन पाएंगे अपडेट्स अबाउट द एशियन गेम्स, 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 टू बी हेल्ड इन जापान। फिलहाल के लिए हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, उसमें हम चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ, जो अगेन एक रिक्वेस्ट थी।

0: जी हाँ, हम आपको ले चलने वाले थे एशियन गेम्स के लाइव अपडेट्स की तरफ, लेकिन अभी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा हमें, अभी लाइव अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो समय है उसको बर्बाद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम चलेंगे एक और प्यारे से सॉन्ग की तरफ, जो अगेन एक रिक्वेस्ट आई थी, और ये रिक्वेस्ट थी आई थिंक ये रिक्वेस्ट थी दीपू की तरफ से। तो सुनते रहिए ये एफएम रेनबो 101.9।
1: शाहिद आजमी जी, एंड द बिग न्यूज दैट वी ब्रिंगिंग फॉर ऑल आर लिसनर्स राइट नाउ इज दैट भारत ने चाइना को मेंस टीम सेमीफाइनल्स के दूसरे मैच में, जी हाँ, हरा दिया है। सात्विक साई रेड्डी एंड चिराग शेट्टी मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट अगेंस्ट चाइनाज लियांग वेकिंग एंड वैंग चैंग, डिफीटिंग देम इन स्ट्रेट सेट्स 2-0। वेल, आपको यह भी बता दें कि इसी मेंस टीम सेमीफाइनल्स का जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें लक्ष्य सेन का सामना हुआ था शी यू क्वी से, जहां पर लक्ष्य सेन उनसे सीधे से सेट्स में यानी 21-16, 21-18 हार गए थे। लेकिन उसके बाद हमारे भारत के सात्विक साई रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जो कमबैक किया है, इट हैज हेल्प्ड इंडिया टाई द स्कोर्स फॉर नाउ, और शुड आई से लेवल द स्कोर्स विद चाइना फॉर नाउ 1-1।
2: बिल्कुल साक्षी, मुकाबला रोमांच की प्रकाशा तक पहुंच गया है। बैडमिंटन है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन शानदार वापसी की है। जैसा आपने बताया, स्क्वैश की बात कर लेते हैं। स्क्वैश में भारत की शानदार शुरुआत देखने को मिली है। स्क्वैश के सिंगल्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। वीर चौटरानी ने पुरुष सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 मुकाबले में श्रीलंका के वकील को 3-0 से हराया। उन्होंने मुकाबला 11-8, 11-3, 11-3 से अपने नाम किया। वहीं तन्वी खन्ना ने भी महिला सिंगल्स राउंड ऑफ 32 में दक्षिण कोरिया की किम दामी को सीधे गेमों में 3-0 से मात दी। स्कोर रहा 11-5, 11-7, 11-5। वहीं अभय सिंह ने पहले ही शुरुआती मुकाबला जीतकर अगले दौर में जगह पक्की कर ली है।
1: राइट, एंड द अदर बिग न्यूज दैट वी कम टू यू विद इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ हॉकी, जहां भारत ने थाईलैंड को एक बहुत ही डोमिनेटिंग और कमांडिंग तरीके से 20-1 से हरा दिया इन द वुमेन्स पूल बी क्लैश एट द गिफो प्रीफेक्चरल ग्रीन स्टेडियम। भारत की तरफ से दीपिका लीड स्कोरर रही, और उसके बाद ऋतुराज पिसल और नवनीत कौर ने भी 3-3 गोल भारत के नाम दागे। अगर हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की तरफ से जो इकलौता गोल उनके खाते में आज आया, वो आया सुपानसा समानसो की तरफ से, हु वॉज एबल टू कन्वर्ट अ पेनल्टी कॉर्नर। वेल फॉर ऑल आवर लिसनर्स, आपको ये भी बता दें कि अब इसके बाद भारत का मुकाबला होगा रविवार को सिंगापुर से, वेयर दे विल बी प्लेइंग देयर फाइनल पूल बी मैच बेसिकली अगेंस्ट सिंगापुर ऑन संडे। शायद
2: साक्षी, एक और उम्मीद की बात करता हूँ, उम्मीद बनी टूट गई। एशियन गेम 2026 के पुरुष स्कीट फाइनल में रणजीत सिंह नरूका ने 25 का स्कोर किया और चौथे स्थान पर है। मामूली अंतर से वो पदक की जो दौड़ थी वहां से, यानी पोडियम फिनिश करने से चूक गए। इस वर्ग का गोल्ड मेडल कतर ने जीता, जबकि सिल्वर चीन और ब्रॉन्ज मेडल चीनी ताइपे के नाम रहा। वहीं अनजीत सिंह, जिन्होंने पिछले एशियन गेम्स में रजत पदक जीता था, इस बार पदक से जरूर चूक गए। हालांकि उनके पास वापसी का शानदार मौका भी बचा हुआ। अनजीत सिंह नरूका कल मिश्रित टीम स्पर्धा में एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे।
1: राइट, एंड अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट हैज ट्रांसपायर्ड इन द डे ऑन दिस टुडे, कहना चाहिए एशियन गेम्स 2026 में, तो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग के अंदर हमारे लिए लेकर आई आज सिल्वर मेडल बाय लिफ्टिंग अ टोटल ऑफ 198 kgs, विच वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हर बेस्ट लिफ्ट इन स्नैच एंड देन क्लीन एंड जर्क कैटेगरी। उसके साथ ही साथ एक और बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खबर जो हमने आपको दी है, वो है सॉफ्ट टेनिस की दुनिया से, जहां जय मीना क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन सॉफ्ट टेनिस एट द एशियन गेम्स। ही वन द ब्रॉन्ज मेडल बाय लूज ऑफ कोर्स टू टाकुया खारुसा कटुपोर इन द सेमीफाइनल, लेकिन अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत थी शाहिद, टू गेट द फर्स्ट मेडल एवर फॉर इंडिया इन एशियन गेम्स इन सॉफ्ट टेनिस।
2: बिल्कुल बड़ी खबर थी। रोइंग में भी भारत के लिए अच्छी खबर आ रही है, जहां पर पुरुषों के क्वार्टरबल स्कल्स में अरविंद कुलदीपिंदर, नवदीप और जकार की चौकड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने हीट्स में 6:18.62 का समय निकालते हुए फाइनल में जगह बनाई।
1: राइट, अब आपको खबर देते हैं कबड्डी की दुनिया से, जहां पर इंडियन मेंस कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को 48-25 से हरा कर अपने लिए और अपने स्थान को और ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है, बिकॉज अब भारत का अगला मुकाबला होने वाला है चाइनीज तैपेई के खिलाफ इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम, जो कि होगा कल। लेकिन सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह रही है कि भारतीय मेन कबड्डी टीम का यह तीसरी स्ट्रेट विक्ट्री थी इस कैंपेन में और कल उनका होगा आखिरी मुकाबला चाइनीज तैपेई के खिलाफ। वहीं भारत की महिला कबड्डी टीम ने भी आज ईरान को 37-23 से वुमेन्स टीम ग्रुप ए के मैच में हरा दिया, क्योंकि ये दोनों ही टीम्स के अंक

0: चार पॉइंट्स पर अब एक साथ आकर लॉक हो गए हैं इस ग्रुप में, तो दे बोथ हैव इंश्योर्ड देयर सेमीफाइनल स्पॉट्स नाउ।
1: जी बिल्कुल, खबरें जारी रहेंगी इस जो अपडेट है इसमें अब इतना ही, लेकिन हाँ ये बता दें कि बैडमिंटन का रोमांच बना हुआ है। अगले घंटे हालांकि 2:30 पर हम नहीं मिलेंगे, 3:30 पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: जी हाँ, ये थे अपडेट्स एशियन गेम्स के। एंड यस, एक बार फिर से हम जुड़ गए हैं हेलो रेनबो के साथ। दोस्तों, ये है एफएम रेनबो 101.9 आकाशवाणी हैदराबाद, और आज यहाँ हेलो रेनबो पर एक छोटा सा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या आज हम बहुत ज़्यादा जल्दी में जी रहे हैं। जी हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि हम सिर्फ टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, हम टाइम को चेज़ कर रहे हैं। मे बी इसीलिए कभी कभी एक सिंपल कप ऑफ टी, बैल्कनी में बैठना, फेवरेट सॉन्ग सुनना या किसी अपने के साथ बिना किसी जल्दबाजी के बात करना बहुत स्पेशल लगने लगता है। ये है तो छोटी छोटी चीज़ें, बट आजकल इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वक्त नहीं निकल पा रहा है कि नहीं? बड़ी कमाल की बात है कि नहीं? वक्त बनाया ही गया है ताकि उसको मैनेज किया जा सके और हर चीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त दिया जा सके। एंड आजकल की जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें हम ये कर नहीं पा रहे, टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे। वेल, आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0402323003, 0402323481 और 0402970475। तो ये तीन नंबर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। एंड यस, अगर आपको हमें कोई मैसेज भेजना है तो नंबर है 4023234822। जैसे बहुत सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट आए हुए हैं और मुझे उन्हें एक एक करके प्ले करना है, लेकिन उससे पहले मैं जुड़ना चाहूँगी अपने एक लिसनर से। हेलो रेनबो।
3: हेलो,
2: हाँ जी नमस्कार।
3: नमस्कार जी, कैसा है?
2: अच्छी हूँ प्रभाकर जी, आप कैसे हैं?
3: क्या मेमोरी पावर है?
2: हाँ,
3: ऐसा है, बोले तरह पहचान लिए इतना।
2: जी जी बिल्कुल,
3: बहुत बढ़िया है। मैं तो
2: गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश चतुर्थी।
3: हैप्पी गणेश मीकू मी कुटुंब सभ्युल की लिजनर संदर की गुड़ा।
2: ओके थैंक यू।
3: తర్వాత అది తెలుగులో ఏం చెప్పారు ఈరోజు టాపిక్?
2: टॉपिक है कि आजकल हम सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में कर रहे हैं ना, हम बहुत ज्यादा हड़बड़ी में हैं और बहुत सारे नहीं, वो तेलुगु तो मैं सीख रही हूँ, थोड़ी थोड़ी आती है, बट ये पूरा कॉन्वर्सेशन माफी चाहूंगी मैं तेलुगु में नहीं कर पाऊंगी।
3: हिंदी में बोलो
2: जी। तो हम टाइम को कैसे मैनेज करें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
3: कैसा मैनेज करते हैं
2: टाइम को, कैसे मैनेज कर सकते? मतलब होता है ना कि बहुत सारी चीजें पीछे छूट जा रही है, हम सिर्फ काम पर ध्यान दे रहे हैं लेकिन हमारे जो अपने हमारे रिश्ते हैं वो पीछे छूट जा रहे हैं।
3: तो
2: ओके, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आपसे बात हो गई, बहुत अच्छा लगा। टॉपिक पर बात नहीं भी होगी तो कोई इशू नहीं है।
3: ऑन एयर मैडम?
2: ऑन एयर जी जी जी। ओके, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभाकर जी, हैप्पी गणेश चतुर्थी।
3: थैंक यू
2: थैंक यू थैंक यू। तो जी हाँ, ये थे हमारे कुछ कॉलर्स एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे सॉन्ग रिक्वेस्ट हैं यहाँ पर, तो मैं एक एक करके हमारे जो लिसनर्स हैं उनके सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करना चाहूँगी फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर शेर खान जी ने एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट की थी, समझौता गमों से कर लो। ओके, तो मैं इस सॉन्ग की तरफ चलती हूँ। उम्मीद है शेर खान जी आप सुन रहे हैं, तो सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9।

0: दोस्तों आप जुड़े हुए हैं हेलो रेनबो 101.9 के साथ, मैं हूँ निशा आपके साथ। एंड यस, काफ़ी सारी बातें हुई आपसे, और भी हमारे कुछ लिसनर्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो नंबर बता दूँ, 0402323230, 0402323 4821 और 0402970 4715। और अगर आप उनमें से हैं जो मैसेजेस भेजकर अपनी बात को बताना चाहेंगे, तो हमारा नंबर है 4023234822। और यहाँ पर एक मैसेज हमें मिला है, ये है अश्विन जी फ्रॉम कोठी कुशल मार्केट, लिखते हैं जय श्री कृष्ण आप सभी को, तो आपको भी जय श्री कृष्ण। एंड यस, एक मैसेज इन्होंने भेजा हुआ है, उस मैसेज को मैं ज़रूर शामिल करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं एक कॉलर की तरफ चलना चाहूँगी, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़े हुए हैं। हेलो रेनबो, हेलो
1: राधे राधे,
0: राधे राधे मुरली जी, कैसे हैं आप? हैप्पी गणेश चतुर्थी।
1: थैंक यू वेरी मच, विश यू द सेम। आई
0: थैंक
1: एम
0: यू
1: वेरी
0: सो मच।
1: हैप्पी एंड आई एम सुपर। मेरे
0: ओके,
1: अलावा ना
0: वेरी
1: हो, आप कैसे
0: वेरी
1: हैं?
0: गुड,
1: मेरे
0: मैं भी
1: अलावा ना
0: बहुत
1: हो,
0: अच्छी हूँ। बागुन नानू
1: ప్రయత్నం చేయండి. తెలుగు తెలుగులో చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది. ఇంకోటి ఏంటంటే, నిషాజీ,
0: జీ జీ
1: జో అపన మాతృభాషా మే బాత్ కరే తో క్యా హై, వో అపన మన్ కు పహుంచతా.
0: మన్ తక్ పహుంచతా హై, ఔర్ యు నో ఉస్సే జో జుడావ్ హై
1: ఆ జుడావ్
0: वो
1: है.
0: इतना ज्यादा होता है कि उसे हम कभी अपने अंदर से निकाल बाहर नहीं फेंक सकते। हम कहीं भी दुनिया के किसी

0: भी कोने में चले जाए, जब कोई हमें मिलता है जो हमारी मदर टंग बोलता है तो कितना अच्छा महसूस होता है बताइए।
1: मामूली सी नहीं रहता वो, तो
0: हाँ
1: वो तो अलग
0: बिल्कुल
1: से ही रहता
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल।
1: छोटा सा वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपन।
0: बिल्कुल
1: अब
0: बिल्कुल सही
1: जो
0: कहा आपने।
1: है आप यकीन नहीं करते, मैं सुबह में आज 10 बजे से 11 बजे तक आप जरा देर से आए शायद।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, जब जाके मैं क्या हुआ, जब से नहीं सुन पाया। अब जो है अभी, अरे लगाएंगे कौन कौन आए सो आरजे बोल के, अभी मैं फोन लगाया तो आपका आवाज सुना दिया। सिर्फ मैं आपको हेलो कह सका हूँ। टॉपिक दिया तो क्या होता, वो टॉपिक मैं नहीं सुना,
0: हाँ
1: हकीकतली बोल रहा हूँ मैं,
0: ओके
1: वो नहीं सुना।
0: कोई बात
1: अगर
0: नहीं।
1: आप टॉपिक बोले तो भी क्या हो सकता है, वो निशा जी जो चिल्ड्रन टीचर के सामने आके डन डन डन बोल के पोएट्री सुना वैसा हो
0: जी
1: जाता।
0: जी जी
1: ये बोल
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: कैजुअली अगर अपन बात करें तो
0: हाँ
1: वो प्यार और वो मोहब्बत वो अलग ही रहता वो।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।
1: कैजुअली बात कर लेना अच्छा है बोल के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ।
0: बिल्कुल
1: अगर हो
0: बिल्कुल
1: सके तो नहीं, टॉपिक के बात करेंगे बोलो तो, आप टॉपिक बोलो तो उससे ही बात करेंगे।
0: कोई बात नहीं है। बात हो गई, इतनी सारी बात हो गई, और जैसा कि आपने कहा कि जब हम बिना किसी टॉपिक के बात करते तो हम बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार शेयर करते हैं जो एक दूसरे के प्रति हमारे मन में होता है। ये काफी है। एंड थैंक यू सो मच मुरली जी
1: थैंक
0: जुड़ने
1: यू
0: के
1: सो
0: लिए।
1: मच। और क्या है निशा जी, आप और एक मैं क्या करना चाह रहा, क्या कहना चाह रहा बोलो तो,
0: जी
1: जो भी बात हो वो एक पल में भी हो दो, कुछ एक एक बात पे भी हो दो, अगर सामने से ये इंसान अगर हेलो कह दिए किसी
0: बिल्कुल।
1: को इतना दिल को पहुंच सकता वो आदमी, वो मतलब पास में जितना भी बात करे, पास में अपन अपने अपने बात हुआ कितने महीनों से भी हों दो, साल से भी हों दो,
0: जी
1: वो सारे याद आ सकते हैं अपने को,
0: ओके जी
1: जो सामने जो भी है। मेरे को आज आपका हाल सुनने के बाद मेरे सारे वो पूरे रिपीट हुए सो है, उसके वजह से मैं टॉपिक पे नहीं बात कर रहा हूँ। हैव ए
0: कोई
1: ग्रेट डे,
0: बात नहीं।
1: थैंक यू
0: थैंक यू
1: वेरी
0: सो
1: मच,
0: मच। थैंक यू। हैव अ ग्रेट
1: आपसे
0: डे
1: बात
0: अहेड।
1: करके बहुत ही संतोष हुआ हूँ आज।
0: ओके थैंक यू। चलिए
1: थैंक यू
0: आपने
1: वेरी
0: ये
1: मच,
0: बोल के मुझे भी खुश कर दिया। एंड विशिंग यू अ वेरी लवली डे अहेड। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू
0: थैंक यू
1: वेरी मच।
0: मुरली जी। ओके तो जी हैं, ये थे हमारे कुछ लिसनर्स। एंड यस काफ़ी अच्छा लगा आप सभी से जुड़कर। एंड यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे हमारे लिसनर्स भी जुड़े हुए थे व्हाट्सएप के थ्रू, और आपके बहुत सारे कॉल्स, जो कि अच्छा लगा मुझे आप से बातें करके। एंड यस इसी के साथ आज आपसे विदा लेना चाहूंगी, इस वायदे के साथ कि होगी फिर से एक बार आपसे मुलाकात। और उस अगली मुलाकात तक अपना रखिए अच्छा सा ख्याल, अपने अपनों का भी रखिए अच्छा सा ख्याल, और हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और सुनते रहिए FM रेनबो 101.9, क्योंकि रेनबो के साथ है लाइफ रंगीन। और यहाँ हर रोज़ कोई ना कोई होता है आपके साथ, आपसे कुछ बातें करने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपको कुछ सुनाने के लिए, है ना, और कुछ ऐसा कहने के लिए जिससे आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ पाए। तो जी हाँ, सुनते रहिए ये FM रेनबो 101.9। और आपको छोड़े जाती हूँ मैं कुछ अपने, ऐसा कह सकती हूँ कि अपने पसंदीदा गानों के साथ। और क्योंकि आज एक बहुत ही बड़े गीतकार का भी उनका जन्मदिन था, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है आज, राजा मेहदी अली खान जी की। तो उनके लिखे हुए गीत हैं ये। एंड यस जो पहला सॉन्ग है वो है फ्रॉम द फिल्म वो कौन थी, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में। एंड आई होप कि ये आप सभी लिसनर्स को पसंद आने वाला है। सुनते रहिए FM रेनबो 101.9।

0: జపాన్ లో జరుగుతున్న 20వ ఏషియన్ గేమ్స్ అప్డేట్స్ ఇప్పుడు.
1: Hello and a very warm welcome to the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Hum lekar aa rahe hain aapke liye is waqt 3:30 baje ke kuch khaas updates from the world of Asian Games. Sabse pehli badi khabar aati hai Wushu se, jahan par Roshibana Devi ne 60 kilogram ki category mein finals mein apni jagah darj kar li hai. Ji haan, Nayaram Roshibana Devi secured her place in the women's 60 kilogram final after beating Indonesia's Thainia 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final, जो कि होने वाला है 23 सितंबर को. आपको ये भी बता दें कि इस विक्ट्री के बाद यानी सेमीफाइनल से फाइनल में प्रवेश करने के बाद भारत को एक और मेडल इस समय कंफर्म हो ही चुका है. अब वो कौन सा होने वाला है, वो सिल्वर होगा या गोल्ड होगा, ये तो 23 सितंबर को ही हमें पता चलने वाला है यानी कल. लेकिन दिस इज अनदर वेरी गुड न्यूज कमिंग आवर वे राइट नाउ, राइट?
2: जी बिल्कुल, अच्छी खबर के बाद उम्मीद थी मीराबाई चानू के बाद ज्ञानेश्वरी देवी भी कमाल करेंगे, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाई. ज्ञानेश्वरी देवी ने 195 किलोग्राम वजन उठाकर जो महिलाओं का 53 किलोग्राम का मुकाबला था, आठवें स्थान पर रही. स्नैच में उन्होंने 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम वजन उठाया. हालांकि उनके लिए बहुत खास नहीं था. उत्तर कोरिया की हॉन्ग क्योंग कॉन्ग ने 223 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता. इसके बाद चीन की जिन लाओ झाओ रही, उसके बाद थाईलैंड की सुचरिता खाम्बा का स्थान रहा है.
1: जी, और अब रुक करते हैं बैडमिंटन की तरफ, जहां पर आज हो रहे हैं मेंस टीम के सेमीफाइनल मैचेस. और इसमें सबसे पहला मुकाबला हुआ भारत के लक्ष्य सेन और दूसरी तरफ से चाइना के शी यू क्वी के बीच में. लेकिन चाइना के शी यू क्वी वॉज टू गुड फॉर लक्ष्य सेन टुडे, जिन्होंने लक्ष्य सेन को 21-16, 21-18 से स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया. लक्ष्य सेन कुड नॉट प्रूव टू बी अ मैच वर्दी ऑफ हिज ओपोनेंट टुडे. वहीं दूसरी तरफ जब अगला गेम शुरू हुआ, उसमें अगला मैच हुआ, उसमें सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना हुआ चाइना के लियांग वेकिंग और वैंग चैंग से. और उसमें द गुड थिंग वॉज दैट द इंडियन पेयर ऑफ रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी वर एबल टू डिफीट द चाइनीज अपोनेंट्स 2-0, 21-11, 22-22, and thankfully this leveled the playing field for both India and China, because then the scores got tied at 1-1 from the first two matches. Uske baad hum chale teesre match ki aur, jahan par China ke Li Shifeng ne Ayush Shetty ko badi hi aasani se straight sets mein hara diya, 21-19, 21-13, thereby taking the lead overall to 2-1.
2: साक्षी, एक ऐसे मुकाबले की बात करते हैं जो बिल्कुल एक तरफा था. भारतीय महिला हॉकी के मुकाबले की बात करते हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड को 20-1 से शिकस्त दे दी.

0: मालवीय में यह भारत की लगातार तीसरी जीत है। मुकाबले की सबसे बड़ी स्टार दीपिका सहरावत रही, जिन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर पर शानदार ड्रैग फ्लिक के जरिए अकेले 9 गोल दागे, एक मैच में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है।
1: राइट, और कबड्डी में से भी एक अच्छी खबर हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, जहां भारतीय मेंस कबड्डी टीम ने आज बांग्लादेश को 48-25 से हराकर अपनी जगह अब दर्ज कर ली है इन द फॉलोइंग गेम्स। और इसके साथ आपको ये भी बता दें कि इंडिया विल नाउ बी फेसिंग चाइनीज तेपाई इन इट्स फाइनल ग्रुप स्टेज गेम, लेकिन दिस वॉज द थर्ड स्ट्रेट विक्ट्री फॉर द इंडियन मेन्स कबड्डी टीम एंड देर ऑब्वियसली मूविंग फर्दर इन द स्टेज नाउ ऑफ ईयर।
0: जी, एक इतिहास की बात करते हैं। आज के खेल में भारतीय खिलाड़ियों ने कुछ ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, इन्हीं में से एक है सॉफ्ट टेनिस में जय मीना, जिन्होंने इतिहास गढ़ा है। सेमीफाइनल में जापान के तायुका कुरोसाका को 2-4 से शिकस्त दी, हालांकि उनसे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतिहास रच दिया। सॉफ्ट टेनिस है, उसमें एशियन गेम्स में भारत का पहला पदक पक्का किया और कांस्य पदक अपने नाम किया। दिलचस्प बात यह कि जय मीना जिस तरह से खेलते थे, शुरू में क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन सॉफ्ट टेनिस को चुना और यहाँ पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान बना डाला।
1: क्योंकि हम अब यहाँ पे मेडल्स की बात करें तो हाउ कैन वी फॉरगेट मीराबाई चानू, वो भी तो आज हमारे लिए सबसे बेहतरीन मेडल लेकर आई है। उम्मीद तो उनसे आज गोल्ड की थी दोस्तों, लेकिन लेकर आई है वो सिल्वर मेडल। नॉनदलेस अ वेरी बिग फीट फॉर इंडियंस इन एवरी स्टेज, बिकॉज 28 वर्षों बाद हमें वेट लिफ्टिंग के अंदर एक मेडल मिला है और मीराबाई चानू के लिए तो पहली बार हुआ एशियन गेम्स में जब वो भारत को अपनी तरफ से भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकी आज सिल्वर मेडल जीतकर।
0: जी बिल्कुल, अब कोई प्रतियोगिता नहीं बची है मीराबाई चानू के लिए कि वो जहां पर उन्होंने मेडल नहीं जीता है। लेकिन चलते चलते एक खबर और दे दे, सेपक टकरा से जीत के बावजूद भारत क्वालिफाई यहां पर नहीं कर पाया। पुरुष टीम रेगू के ग्रुप बी के मुकाबले में फिलीपीन से 2-1 से हालांकि उसको हराया, लेकिन उसके बावजूद वो क्वालिफाई नहीं कर पाई।
1: जी, और आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपसे दोबारा मिलेंगे शाम को 4:30 बजे विद द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम दैट आवर। अभी के लिए फिलहाल मुझे यानी साक्षी मांडवाल और मेरे साथ साथ शायद आजमी जी को दीजिए इजाजत, जुड़ेंगे आपसे 4:30 बजे शाम को एक बार फिर से। थैंक यू।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम।
3: FM Rainbow 101.9

0: జపాన్ లో జరుగుతున్న 20వ ఏషియన్ గేమ్స్ అప్డేట్స్
1: हम लेकर आ रहे आपके लिए घड़ी में बज रहे हैं 4:30 और इस वक्त के लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026. मैं हूं साक्षी मांडवाल, मेरे साथ इस वक्त यहां पर है मौजूद शाहिद आजमी भी. और सबसे पहला अपडेट जो हम दोस्तों आपके लिए लेकर आएंगे वो है बैडमिंटन की दुनिया से. नॉट अ लॉट ऑफ ब्राइट चीयरफुल न्यूज फ्रॉम देयर बिकॉज इंडिया लॉस्ट टू चाइना 1-3 इन द मेंस टीम सेमीफाइनल एट द एशियन गेम्स 2026 एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल. सबसे पहला मैच जो इसमें हुआ वो हुआ लक्ष्य सेन और शी यू क्वी के बीच में, जिसमें द चाइनीज अपोनेंट डिफीटेड लक्ष्य सेन 21-16, 21-18 एंड फ्रॉम देयर इंडिया रियली कुड नेवर गेट दैट मोमेंटम गोइंग बिकॉज द सेकेंड मैच सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों ने अपने नाम कर लिया 2-0 से क्लीन सेट्स में टू लेवल इंडिया अप अगेंस्ट चाइना 1-1. लेकिन वंस अगेन व्हेन आयुष शेट्टी केम इन टू फेस ली शिफिंग, वहां पर ली शिफिंग हैड द बेटर ऑफ आयुष शेट्टी defeating him in straight sets 21-19, 21-13, thereby putting China ahead of India 2-1. And finally, Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match at the semi-final tie. By the way, India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event. Shahid, a disappointing day for our shuttlers.
2: जी बिल्कुल, बैडमिंटन से उम्मीद अच्छी थी, लेकिन हाँ ये भी था मजबूत प्रतिद्वंदी हमारे खिलाड़ी हैं. उशु की बात कर लेते हैं, एशियन गेम्स में दो बार मेडल जीत चुकी नौरेम रोशिबीना देवी. महिला 60 किलोग्राम सांडा सेमीफाइनल में इंडोनेशिया की थानिया कुसुमांतियास को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. रोशिबीना ने हांगझाउ 2023 में सिल्वर मेडल और जबकि जकार्ता पालमबाग एशियन गेम्स 2018 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था. एशियन गेम्स में अपना तीसरा मेडल पक्का कर चुकी रोशिबीना अब कल होने वाले फाइनल में अपने पदक का रंग बदलना चाहेंगी क्योंकि सिल्वर और ब्रॉन्ज पहले जीत चुकी हैं.
1: राइट, ही इज विशिंग हर ऑल द वेरी बेस्ट. कैनू स्प्रिंट की भी थोड़े से अपडेट्स लेके आपके लिए आ रहे हैं. इंडिया मेंस कयाक 4-500 मीटर टीम फिनिश थर्ड इन द हीट्स एंड क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ए. अरुण सिंह, हर्षवर्धन सिंह, शक्तावत, वरिंदर सिंह और नावचा सिंह ओइनम are going to be representing India in the final A category. वहीं मेघा प्रदीप finished 5th in the women's canoe single 200 meter heats with the timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-finals. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayaks double 500 meter heats with the timing of 2:02.538 seconds. They have also qualified for the semi-finals. वहीं in the men's kayak double 500 meter heats, Chempa Dale, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished in the 5th spot and have qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot also and qualified for the semi-finals.
2: जी, यहां पर शूटिंग की बात कर लेते हैं. हालांकि जो हमारी स्टार शूटर थी, चाहे मनु भाकर की बात करें, ईशा सिंह या सुरुचि, वो पदक की दौड़ से बाहर हुई, लेकिन स्कीट में बड़ी खबर आई. शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल जो ब्रॉन्ज मेडल की खबर आई है, उसमें स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम कर लिए. सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की करते हैं. राजा ढिल्लों, परिनाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिगड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किए और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया. और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया. ओलंपियन अनजीत सिंह नरुका

0: सिराज अहमद खान और भौक्तेक सिंह ने मिलकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिला दिया।
1: जी और टीटी की दुनिया से भी आपके लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं कि दोनों ही मिक्स डबल पेयर्स हमारे जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, सबसे पहले हरमीत देसाई और यशस्वनी घोरपड़े, उन्होंने हरा दिया 3-1 से हांगकांग के यू क्वान तो और विंग लैम्प को, एंड देयर बाय दे हैव बुक्ड अ प्लेस एंड मूव्ड ऑन टू द लास्ट एट। वहीं मनु शाह एंड दिया चिटाले ने भी इन द मिक्स डबल्स क्वार्टर फाइनल्स में मालदीव्स के अहमद मूसा और नजीम एशद को हरा कर लास्ट एट में अपनी जगह बना ली टेबल टेनिस में।
0: यहाँ मीरा बाई चानू ने जो अपनी पदकों की झोली है, जहाँ पर एशियाड का कोई मेडल नहीं था, उसको भी उन्होंने भर दिया है। जी हाँ, मीरा बाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग इवेंट में कुल 198 किलोग्राम, जिसमें 87 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क का वजन था, उसे उठाकर सिल्वर मेडल जीत लिया और एशियन गेम्स में जो मेडल का सूखा था वो खत्म कर दिया।
1: राइट, और हम अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे आज मेडल टैली की और किस तरह से भारत का भी दिन रहा है, तो ओवरऑल आपको ये बता दें बिफोर कमिंग टू द मेडल टैली कि सॉफ्ट टेनिस के अंदर भी आज के दिन की शुरुआत एक बहुत अच्छे नोट पर हुई और शायद एशियन गेम्स 2026 की सबसे अच्छी खबर, वन ऑफ द टॉप 10 खबर ये रहेगी कि जय मीना क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर मेडल इन सॉफ्ट टेनिस इन द एशियन गेम्स। ही वन द ब्रॉन्ज मेडल ऑफकोर्स लूजिंग आउट टू तकुया कुरोसाका 2-4 इन द सेमीफाइनल, लेकिन अपने आप में पहला मेडल भारत को मिला शाहिद इन सॉफ्ट टेनिस एवर इन द एशियन गेम्स, अ वेरी बिग अचीवमेंट बाय द इंडियंस आउट देयर।
0: जी बिल्कुल, बिग अचीवमेंट है, अभी अचीवमेंट और भी आना बाकी है जैसे जैसे एशियन गेम्स बढ़ेगा, लेकिन इस वक्त की अपडेट तक यानी आज की इस अपडेट के लिए आज तक अब यहीं पर मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी और साक्षी मांडवाल को अनुमति दीजिए। अब से ठीक एक घंटे बाद 5:30 पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।

FM Rainbow 101.9. పాటలే

0: Roshibana Devi secured her place in the women's 60-kilogram final after beating Indonesia's Thania Kusumanangityas 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final, which is on the 23rd September. और इसके साथ ही आपको ये भी बता दे कि वुशु में अब भारत को एक मेडल भी अश्योर हो चुका है. वो कौन सा होने वाला है, शायद सिल्वर या फिर गोल्ड, ये तो हम सबको कल ही पता चलेगा.
1: जी बिल्कुल, कल पता चलेगा. लेकिन आज जिस तरह से मीराबाई चानू ने तहलका मचा, वो सबने देखा. हालांकि गोल्ड की उम्मीद थी लेकिन वो वहां तक नहीं पहुंची. सिल्वर मेडल जीता जरूर लेकिन एक अपसेट भी देखने को मिला, एक निराशा देखने को मिला. ज्ञानेश्वरी देवी 8वें स्थान पर रही, 195 किलोग्राम का वजन उठाया. महिलाओं की जो 53 किलोग्राम भार वर्ग की प्रतियोगिता थी उसमें 8वां स्थान हासिल हुआ. उत्तर कोरिया की होंग योंग कॉन्ग ने 223 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता. इसके बाद चीन की जिंगलांग झाओ का नंबर आता है, उन्होंने कांस्य पदक अपनी झोली में डाला.
0: Right, and do we have some updates to give from weightlifting? Because अभी तो आप मीराबाई चानू की बात कर ही रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम थोड़े और अपडेट्स भी देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं. Well, but I will at the end of the day tell all our viewers की weightlifting में सबसे बड़ी खबर तो मीराबाई चानू की थी, लेकिन एक और अपडेट आ सकता है, वो है ज्ञानेश्वरी यादव के लिए भी. जी हाँ, लेकिन वहां से कोई खुशखबरी नहीं आने वाली है, क्योंकि ज्ञानेश्वरी यादव फेल टू लिफ्ट 105 kilograms in a first attempt in the clean and jerk round and later went on to successfully lift in her second attempt in the women's 53 kilogram category. So overall it was not a good day because she went out of the race for a top 3 finish. But iske sath hi quickly leaving our viewers with Bharat ki is samay ank talika pe standing kya hai. 13th position pe hai India with a total of 12 medals, which has one gold, and of course we have 4 from shooting, which is in silver, one weightlifting, and then we have a total, okay, wrapping it up with 12 medals, which includes the one gold, hoping that India climbs up the position shayad once again back up.
1: Ji bilkul, hum ummeed karenge isi tarah Bharat ka jo karma badhta rahega. Filhal ab aapse mulaqat hamari hogi theek 6:30 tak. 30 minute par usse pehle mujhe Mohammad Shahid Azmi aur Sakshi Mandwal ko anumati dijiye. Namaskar.
2: Asian Games 2026 Aichi Nagoya.
3: మీరు వింటున్నారు ఆకాశవాణి రెయిన్బో ఎఫ్ఎం తాజా ట్యూన్స్. అనగనగా ఒక రాజు మూవీ నుంచి భీమవరం సాంగ్ మీరు వినబోతున్నారు. చంద్రబోస్ గారి రచన, మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందించారు, నవీన్ పోలిశెట్టి, నూతన్ మోహన్ పాడిన పాట.

0: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
1: स्वागत है दोस्तों, आप सबका घड़ी की सुई में ठीक 6:30 हो गए।

0: एशियन गेम्स पर अपडेट के साथ हाजिर हूं मैं मोहम्मद शाहिद आजमी और मेरे साथ हैं साक्षी मांडवाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, बात करते हैं मुक्केबाजी की। मुकाबला एक ही था लेकिन भारत को वहां जीत मिली। जी हां, भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम का जो मुकाबला था फाइनल में, जो क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्ष के राष्ट्रमंडल खेल स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा वेंगेल को अंतिम, जिस तरह से मुकाबला था 16 में से जो अंतिम जो 16 का मुकाबला था उसमें 5-0 से जीत दर्ज की, यानी 5-0 से उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने के एक कदम दूर है, यानी वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमो से भिड़ेंगे।
1: जी शुक्रिया शाहिद, और आगे बढ़ेंगे वुशू की बात करते हैं। दोस्तों, द बिग न्यूज दैट वी हैड ऑल बीन वेटिंग फॉर इज दैट रोशिबिना देवी हैज सिक्योर्ड हर प्लेस इन द वुमेन 60 किलोग्राम फाइनल आफ्टर बीटिंग इंडोनेशिया स्थानिया 2-0 इन द सेमीफाइनल। ये मुकाबला आज घटित हुआ और अब इसके बाद कल हम सब रोशिबिना देवी को देख सकते हैं फाइनल्स के मुकाबले में, एंड होपिंग that she gets us the coveted gold. Well, ये तो समय ही बताएगा कल कि भारत के नाम कल वुशु में सिल्वर आ रहा है या गोल्ड, लेकिन रोशिबिना देवी को हर भारतीय की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अ बिग गेम टुमारो।
0: रोइंग की बात करते हैं साक्षी, रोइंग से भारत के लिए बेहद अच्छी खबर आ रही है। एशियन गेम्स में भारतीय रोअर्स ने 4 स्पर्धाओं में फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6:52.84 के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6:15.63 के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में जगह बना ली, यानी पहुंच चुकी है। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह हासिल कर ली है। वहीं पर क्वार्टरफल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलेंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने भी फाइनल में जगह बना ली है। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स की जो मुकाबला है यानी फाइनल मैच जो है 24 सितंबर यानी कल खेला जाएगा।
1: राइट, और अब बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। उम्मीद तो वैसे हमारे शटलर्स से आज बहुत ज्यादा लगाई गई थी क्योंकि मेंस टीम सेमीफाइनल्स आज घटित हुए हैं, लेकिन इट वाज आई वुड सी अ मिक्स्ड फिनिश बाय आवर शटलर्स बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी फिनिश्ड विद द ब्रॉन्ज मेडल। यस, इंडिया लॉस्ट 1-3 टू चाइना इन द मेंस टीम सेमीफाइनल एंड द ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज मेडल। ऑल्सो दिस इज इंडियाज ये जो ब्रॉन्ज मेडल है ये भारत का सेकेंड एवर एशियन गेम्स मेडल है मेंस टीम बैडमिंटन के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू ऑल्सो गिविंग यू स्लाइट डिटेल्स ऑन हाउ द ऑल द मैचेस वेंट। सबसे पहला मैच हुआ था शी यू कुई के और लक्ष्य सेन के बीच में, जिसमें शी यू कुई डिफीटेड लक्ष्य सेन इन स्ट्रेट गेम्स विनिंग 21-16, 21-18। बाद में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने नेक्स्ट मैच के अंदर एक कमबैक जरूर करवाया भारत को अगेंस्ट चाइनाज लियांग विकिंग एंड वैंग चैंग बाय डिफीटिंग देम इन स्ट्रेट गेम्स 2-0, बट दैट वॉज नेवर गोइंग टू बी इनफ बिकॉज ली शिफेंग देन लेटर बीट आयुष शेट्टी 21-19, 21-13 और इसके साथ ही चाइना ने 2-1 से अपनी बढ़त भी बना ली इन द मेंस टीम सेमीफाइनल। एंड द फोर्थ मैच जो हुआ था अर्जुन और हरिहरन के बीच में, उसमें वंस अगेन दे वेंट डाउन 21-16, 17-21, 21-9, दे जस्ट वर नो फाइट टू देयर चाइनीज अपोनेंट्स एंड एज अ रिजल्ट चाइना डिफीटेड इंडिया 3-1 इन द मेंस टीम सेमीफाइनल्स।
0: जी चीन की बात की तो चीन के बारे में बता दें, मेडल टेबल पर चीन अभी भी सबसे ऊपर बना हुआ, 48 गोल्ड, 20 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज समेत कुल 78 पदक जीतकर सबसे ऊपर बना है, जबकि जापान जो मेजबान है इस एशियन गेम्स का 15 गोल्ड, 25 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज समेत 67 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर। वहीं दक्षिण कोरिया की बात कर लेते हैं, 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज समेत 41 पदक जीतकर तीसरे पायदान पर है।
1: जी, और अब एक नजर भारत के ऊपर भी डाल लेते हैं कि वेयर एग्जैक्टली इज इंडिया स्टैंडिंग इन द मेडल टेबल। भारत की पोजीशन इस समय है 13th। कुल मिलाकर भारत के पास हैं 12 मेडल्स, जिसमें से एक गोल्ड आया है क्रिकेट की दुनिया से, द वुमेन्स क्रिकेट गेटिंग अस दैट गोल्ड यस्टरडे। 5 सिल्वर मेडल्स हैं, जिसमें 4 शूटिंग से आए, 1 वेट लिफ्टिंग से। 6 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, जिसमें से 3 शूटिंग में आए, 1 मिक्स्ड मार्शल आर्ट में आया है, 1 सॉफ्ट टेनिस में आया है और 1 बैडमिंटन में। हियर इज होपिंग दैट इंडिया गोज ऑन टू एड मेडल्स, स्पेशली द कोवेटेड गोल्ड टू देयर किटी मोर एंड मोर इन द कमिंग डेज। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास इस अपडेट में शाम 6:30 आप सबके लिए बस इतना ही था। आपसे एक बार दोबारा जुड़ेंगे दोस्तों 7:30 विद ऑल द रैप अप ऑफ द एंटायर डे अपडेट एंड ऑल्सो गिविंग यू प्रीव्यू ऑफ द इवेंट्स लाइंड अप टुमारो। फॉर द मोमेंट

0: ఇప్పుడు మీరు 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ అప్డేట్స్ వింటారు.
1: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచి నగోయా.
2: स्वागत है दोस्तों आप सबका एशियन गेम्स 2026 की ताजा अपडेट के साथ. आज की ये अंतिम अपडेट है. बात करेंगे आज जो दिन भर में उठा पटक हुई, कहीं अच्छा हुआ, कहीं लगा कि कुछ अच्छा और होना चाहिए था, कहीं उम्मीद बनी, कहीं उम्मीद टूटी, इसी पे बात करेंगे. आज क्या कुछ भारत के हाथ लगा. वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का जहां मान बढ़ाया, वहीं शूटिंग में भारतीय पुरुष स्कीट टीम ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. वहीं महिला स्कीट टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया. सॉफ्ट टेनिस में पुरुष सिंगल्स में जय मीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास

0: रचा। ये सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला एशियन गेम्स पदक है। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष टीम ने टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इस तरह वेटलिफ्टिंग, शूटिंग, सॉफ्ट टेनिस, बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों और टीमों ने भारत की पदक की संख्या जो है उसमें इजाफा किया। वहीं कल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, कई बड़े इवेंट होने वाले, कई पदक दांव पे लगे हैं। जी हाँ, एशियन गेम्स में 24 सितंबर को भारत की नजरें कई अहम मुकाबलों और पदक स्पर्धाओं पर रहेंगी। रोइंग में बलराज पवार सिंगल स्कल्स फाइनल में उतरेंगे, सतनाम सिंह और सलमान खान डबल स्कल्स फाइनल में चुनौती देंगे, महिला फोर लाइट वेट डबल स्कल और क्वाड्रपल स्कल्स में भी भारतीय नाविक पदक की दौड़ में बने रहेंगे। उशु में रोशिबिना देवी महिला 60 किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में चीन की झांग शाओवो के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए उतरेंगी। शूटिंग में आकाश भारद्वाज, कमलजीत, केदारलिंग बालकृष्ण 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की चुनौती पेश करेंगे। वहीं स्कीट मिस टीम में परिनाथ धालीवाल और आनंदजीत सिंह नरुका भी उतरेंगे, यानी पदक के लिए उनकी जोड़ी भी मध्य मुकाबिल होगी। कैनो स्प्रिंट में पुरुष कयाक फोर और कैनो डबल 500 मीटर के फाइनल में भारतीय खिलाड़ी पदक के लिए उतरेंगे। टीम स्पर्धा में पुरुष कबड्डी का मुकाबला चीनी ताइपे से और महिला कबड्डी टीम का मुकाबला जापान से होगा। वहीं पुरुष हॉकी टीम कल दक्षिण कोरिया से जोर आजमाइश करेगी, या यूं कहें कि वहां जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। मुक्केबाजी की बात करें तो पुरुष 70 किलोग्राम में प्री क्वार्टर फाइनल में सुमित का मुकाबला अली कासिम हमदान अल सर्रे से होगा। वहीं मुक्केबाजी की महिला वर्ग में 51 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 में साक्षी रिंग में उतरेंगी, उनका सामना कजाकिस्तान की अलुआ बालिकबेवा से होगा। भारत की परवीन हुड्डा 65 किलोग्राम में उज्बेकिस्तान की मलिका नोजिमोवा से भिड़ेंगी। एथलेटिक्स की बात करें तो एथलेटिक्स में आशा इलंगो और निहारिका वशिष्ठ ट्रिपल जंप फाइनल में उतरेंगी। 100 मीटर में अनिमेश कुजूर और गुरिंदर सिंह भारतीय चुनौती पेश करेंगे, जबकि महिला 10,000 मीटर फाइनल में सीमा पर भी सभी की निगाहें बनी होंगी। कुल मिलाकर 24 सितंबर भारत के लिए कई खेलों में पदक की उम्मीदों से भरा होगा। कई खेलों में भारत की पदक पर निगाहें होंगी। खासकर अगर बात करें तो एथलेटिक्स में जो कल से मुकाबले शुरू हो रहे हैं, भारत के कई वहां पर जो खिलाड़ी उतरेंगे, साथ ही साथ कबड्डी, शूटिंग या हॉकी, कई जगहों पे पदक होंगे, यानी सभी की निगाहें इन खेलों पे लगी होगी। देखना होगा भारत कहां तक पहुंचता है, यानी भारत की जो चुनौती है वो कहां तक आती है, किन किन खिलाड़ियों को पदक मिलता है। लेकिन हाँ, आज का जो दिन था शूटिंग में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत खास नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की जो बड़ी खिलाड़ी हैं, बड़े जो नाम हैं, चाहे हम बात करें मनु भाकर की बात करें, सुरुचि सिंह की बात करें या ईशा सिंह की बात करें, वो सभी यहाँ पर नाकाम फिलहाल नजर आए। हालांकि 25 मीटर में अभी भी मनु भाकर को पदक जीतने की उम्मीद है। अगर आप पदक तालिका पर देखें तो सबसे ऊपर चीन 48 गोल्ड, 20 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज सहित 78 पदक जीतकर है, जबकि जापान 15 गोल्ड, 25 सिल्वर, 27 ब्रॉन्ज समेत 67 पदक के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर कोरिया है, यानी दक्षिण कोरिया 8 गोल्ड, 8 सिल्वर, 25 ब्रॉन्ज समेत 41 पदक के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि भारत की बात करें, भारत पदक तालिका पर तीसरे स्थान 13वें स्थान पर है, 1 गोल्ड, 5 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज समेत कुल भारत के खाते में 12 पदक हैं। कल यकीनन भारत की जो पदक की संख्या उसमें इजाफा होगा, और उम्मीद है कि जो तालिका पदक की है उसमें भी भारत की जो तालिका में जो स्थान है उसमें भी उछाल होगा। जो 13वें से उम्मीद है कि और ऊपर भारत जाएगा। फिलहाल आज की इस अंतिम अपडेट के साथ मुझे मोहम्मद शाहिद आजमी को प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों से,
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति,
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेनबो 101.9 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप पेश है प्रोग्राम नए रंग।

दोस्तों, अगर कुछ सेकंड्स के लिए हम सुनना ना पाए और अक्सर लोग इससे बेचैन हो जाते हैं और खुद ब खुद इशारों की बात करने की कोशिश करते हैं, और दुनिया में कई अफराद कुव्वत समाअत यानी सुनने की कुव्वत से महरूम हैं, पर इशारों से बात करते हैं और ज़िंदगी अच्छी तरह गुजार रहे हैं। आज 23 सितंबर है और आज ही के दिन इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस मनाया जा रहा है। साइन लैंग्वेज इशारों की ज़ुबान दुनिया की सबसे सादा ज़ुबान है। इसमें झूठ, बनावट या किसी गलत फहमी की गुंजाइश नहीं होती। तो चलिए इस खास दिन पर सुनते हैं कुछ गीत, गीत सुरीले गाते जामे। दोस्तों, जब अल्फाज कम पड़ जाए तो हाथों और निगाहों के इशारे पैगाम रसाई का काम करते हैं। आइए इसी पर सुनते हैं एक ऐसा गीत

फिल्म कश्मीर की कली से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों, अगर हम इशारों की बात करें तो मालूम होगा कि निगाहों के इशारे से अक्सर बात समझ में आ जाती है, जहाँ एक लफ्ज़ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और बात मुकम्मल हो जाती है। आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत

फिल्म सीआईडी से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। सामाइन नारंग प्रोग्राम की बस जारी रहेगी, हम दोबारा हाजिर होंगे 10:20 पर।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, एफएम रेमो 101.9 MHz पर। कुछ ही देर में जापान में खेले जा रहे 20वें एशियन गेम्स की डेली हाइलाइट्स हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगझाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेटलिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेटलिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
1: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Roshi Vanadevi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Thania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
1: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jaimina won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi, Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Mina's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarterfinal to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
3: बिल्कुल भरोसा था और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने, तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: टाइम नाउ टू हेड टू द शूटिंग रेंज वेयर शाहिद आजमी हैज अ रिपोर्ट from a mixed day for the Indian contingent.
4: शूटिंग रेंज से भारत के लिए डबल ब्रॉन्ज की खबर सामने आई है। स्कीट टीम इवेंट में भारतीय निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला और पुरुष दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक अपने नाम किए। सबसे पहले बात महिला स्कीट टीम की, राजा ढिल्लोन, परिणाश धालीवाल और महेश्वरी चौहान की तिकड़ी ने शानदार निशानेबाजी करते हुए 331 अंक हासिल किया और भारत की झोली में कांस्य पदक डाल दिया। और इसके बाद पुरुष स्कीट टीम ने भी कमाल कर दिया। ओलंपियन अनंतजीत सिंह नारुका, मेराज अहमद खान और भौतिक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया। वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राजा ढिल्लोन भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही। यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राजा ढिल्लोन, अनंतजीत सिंह नरुका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा। निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए। भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है। आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे।
1: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Navneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in a hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena. Courtesy Shahid Azmi.
4: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया। पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं। वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमोव खेलेंगे।
1: Time now for all the action from the Indian contingent from table tennis. Sakshi Manwal has a report.
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Huan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manu Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Kuai Man of China, while Dia and Manish will face Wang Chun and Du Hoi of Chinese Taipei.
1: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
0: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल। इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्विंटम सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्ट्योम से हुआ। यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए। इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया। वहीं बात करें महिलाओं के व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिनराज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी।
1: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे. Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yukui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sattvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
0: भारतीय महिला टीम का मुकाबला ईरान से हुआ और भारतीय टीम ने ये मैच 37-23 के अंतर से अपने नाम कर लिया। मुकाबले के पहले हाफ में भारत 19-15 से आगे था। दूसरे हाफ में भारतीय खिलाड़ियों ने डिफेंडिंग और रेडिंग दोनों में बेहतर तालमेल दिखाया और बढ़त को लगातार मजबूत किया। इस जीत के साथ भारतीय महिला टीम ने ग्रुप स्टेज में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब बात करते हैं भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की। पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया। पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की। बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा। वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी। इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे। एशियन गेम्स 2026

0: में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है।
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
2: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
0: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया। भारत की ओर से फोआद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे। इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं, यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है। हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया।
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
2: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Echi Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6 मिनट 52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6 मिनट 15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची। लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई। क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं। डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा।
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे। साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड।
2: India's men's kayak 4-500-meter team finished third in the heats and qualified for the final A. Arun Singh, Harshvardhan Singh Shaktawat, Varinder Singh, Nucha Singh Oynam combined for a timing of 1 minute 29.447 seconds in the heats. Megha Pradeep finished fifth in the women's canoe single 200 meters heats with a timing of 49.675 seconds and qualified for the semi-final. Sonia Devi and Parvati Geeta ended 6th in the women's kayak double 500 meter heats with 2 minutes 02.538 seconds. They have qualified for the semi-finals. In the men's kayak double 500 meter heats, Chempadil, Satya Prakash, Prasanna Kumar and Prohit Baroy finished on the 5th spot with the timing of 1 minute 41.141 seconds and qualified for the semi-finals. In women's canoe double 500 meter heats, Megha Pradeep and Neha Devi finished on the 5th spot with a timing of 2 minutes 8.713 seconds and qualified for the semi-finals.
1: The Indian contingent is really trying their best to make an impact in Sepak Takraw. Let's hear what Vijeta Chaturvedi has for us in her report.
0: फुर्ती, संतुलन और किक के खेल सेपक टैक्रो में आज भारतीय अभियान में भारत के पुरुष टीम रेगु का मुकाबला फिलीपींस से हुआ। भारत के लिए ये मुकाबला बेहद महत्वपूर्ण था। भारत ने खेल का आगाज शानदार अंदाज में किया। पहले मुकाबले में भारत ने फिलीपींस को 2-0 से शिकस्त दी। उसके बाद दूसरे मैच में भी भारत ने कड़ा मुकाबला करते हुए स्कोर 2-1 कर दिया, लेकिन तीसरे और निर्णायक रेगु में भारत को झटका लगा। फिलीपींस ने वापसी करते

हुए तीसरा रेगु 2-0 से जीत लिया। इस तरह भारत ने मुकाबला तो 2-1 से जीत लिया, लेकिन अपने पहले मुकाबलों में भारत जापान और मलेशिया से हार के चलते सेमीफाइनल में जगह नहीं बना पाया।

दोस्तों आप सुन रहे थे गीत सुरीले गाते जा में कुछ सुरीले गीत, और हम बात कर रहे थे इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस पर। वैसे दोस्तों कभी कभी शोर से दूर होकर खामोशी अख्तियार करना और इशारों के एहसास को महसूस करना किसी लफ्ज़ से ज़्यादा ताकतवर होता है, और तवील गुफ्तगू से भी ये कभी कभी बेहतर होता है। आइए सुनते हैं एक गीत जिसको लिया है हमने 1942 अ लव स्टोरी से।

फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। वैसे दोस्तों कहते हैं कि कम्युनिकेशन असल में तब अच्छी लगती है जब सामने वाला आपके इशारे को समझ रहा हो और अच्छी तरह इसका जवाब भी दे रहा हो। और अगर कभी इशारों को समझने में दुश्वारी हो जाए तो दिल से यही आवाज़ आती है। आइए सुनते हैं इसी पर ये गीत।

फिल्म अजहर से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल आमतौर पर बहुत से जगहों पर होता है, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करने, ट्रेन्स के स्टेशन से गुजरते वक्त, और अगर कोई दूर खड़ा हो तो ऐसे में आवाज़ नहीं, इशारे से बात होती है। आइए सुनते हैं गीत जिसको लिया है हमने फिल्म कभी खुशी कभी गम से।

0: प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 25 सितंबर को आप सुन सकते हैं डॉक्टर एस जी विष्णु सत्या को। उन्वान होगा यूनानी मेडिसिन में मुख्तलिफ अमराज का इलाज। तो सामीन सुनना न भूलें डॉक्टर साहबा की मुफीद बातें और मशवरे रात 9:30 बजे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी हैदराबाद के रेनबो FM 101.9 पर।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीले का तेजा में कुछ सुरीले गीत। सामईन इशारों की जबान सिर्फ ऐसा साथ के लिए नहीं बल्कि हर मूड और जज्बे के लिए है और अक्सर चेहरे के तासरात से गुस्सा और एटीट्यूड भी बगैर बोले पहचाना जा सकता है। आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसको लिया है हमने फिल्म दबंग से है।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म दबंग से लिया गया ये गीत। दोस्तों, अगर हम बॉडी लैंग्वेज और हाथों के मूवमेंट की बात करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का जरिया होते हैं, और ये चीज़ लोग अहम मौक़ों पर महफिलों में हम देखते हैं कि लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और आइए सुनते हैं अगला गीत।

0: में क्या कुछ स्टोरी सुना रहे, स्टार्टिंग से सुना ना। भाभी को घुमाने के लिए किधर ले गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?
1: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: सौ का नोट दिखाया, उसको सूसु करने का आइडिया तब आया।
1: अरे भाई तू जीनियस है, फिर क्या हुआ?
0: कभी चूमती इधर कभी चूमती उधर, अरे बोले मेरा मुन्ना इतने साल थे कि थर।
1: ऐसा हो गया भाई।

0: सर्कस सर्कस सर्कस
1: फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जिस्मानी हरकत और इशारों के अंदाज से लोग अपनी बात बयान कर देते हैं, जहां अल्फाज से पहले हाथों और चेहरों के तासरात की कहानी ये बयान कर देती है। आइए सुनते हैं कि जिसको लिया है हमने फिल्म कहो ना प्यार है से।

फिल्म कहो ना प्यार है से लिया गया ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस का असल मकसद यही है कि हम अपने माशरे में शमूलियत, इंक्लूजन और मसावात को फ़रोग दें, इशारों की ज़बान को समझें, इज़्ज़त दें और इन तमाम लोगों को अपने साथ शामिल करें जो बोल या सुन नहीं सकते हैं। आइए सुनते हैं दोस्तों गीत सुरीले कादेजा में आखिरी गीत फिल्म खामोशियां से।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत सुरीले, गाते जा में कुछ सुरीले गीत। अब आइए सुनते हैं प्रोग्राम नरंग के आखिर में पयाम शब पेश कर रहे हैं सैदी।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। भारत ने आज ओमान के पूर्वी तट के पास वाणिज्यिक जहाज एमवी केपडाओ पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाज पर सवार 20 भारतीय नाविकों में से 19 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलो ग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुस्मनित्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। मीराबाई ने 28 वर्ष का सूखा खत्म करते हुए भारत को पदक दिलाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. India today reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session this evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-US bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. US President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L.69 Consultative Ministerial Interaction on UNSC Reform along with his St. Lucian counterpart Alva Baptist. Addressing the meeting, Dr. Jaishankar noted that the Global South is at the receiving end of the unprecedented changes that the world is undergoing, with the UN falling short of expectations. He also underlined the inability of the UN Security Council to address ongoing conflicts and threats to international peace and security, only highlight the urgency of reform. New Delhi has categorically rejected the unwarranted and factually incorrect references to India in the joint communique of the so-called Organization of Islamic Cooperation, OIC, contact group on Jammu and Kashmir. In a statement, Ministry of External Affairs said the OIC has no local stand-by to pronounce on matters that are strictly internal to India. It said the entire Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh are integral and inalienable part of India, and no amount of repetition of politically motivated propaganda can change this reality. The Defence Ministry has signed a contract of over 810 crore rupees with Bharat Dynamics Limited for the procurement of 160 satellite smart anti-airfield weapons SAT-SAAW along with associated equipment for Indian Air Force. The contract was signed in the presence of Defence Secretary Rajesh Kumar Singh in New Delhi today. The delivery of SAT-SAW is scheduled between 2027-2028 and 2028-2029. SAT-SAW is an air-to-ground precision guided glide bomb which can be launched from platforms like Jaguar, Hawk,

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Along with my co-anchor Subodh Mishra, I am Sarabjit Kaur.
1: धन्यवाद सरबजीत और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज की खबरों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद सुबोध जी. गुड इवनिंग सरबजीत.
0: गुड इवनिंग मैम.
1: पहले हेडलाइंस सरबजीत से.
0: Benchmark domestic indices rise, Sensex gains 299 points, Nifty settles nearly 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near two-week low. Brent hovers around $100 per barrel.
1: प्रमुख शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 299 अंक बढ़ा. निफ्टी 24,450 के पास पहुंचा. वैश्विक रेटिंग एजेंसियों फिच और एस&पी ग्लोबल ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी विकास अनुमान क्रमशः 6.9% और 7% ठहराया. और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें लगभग दो हफ्ते के न्यूनतम स्तर पर. ब्रेंट क्रूड लगभग $100 प्रति बैरल पर.
0: And listeners, before we take you through the economic news of the day, may we remind you that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: चले अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज बढ़त का रुख रहा. सेंसेक्स 299 अंक

0: यानी 0.4% बढ़कर 74,828 पर बंद हुआ। निफ्टी 118 अंक यानी आधा प्रतिशत ऊपर 23,447 पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अन्य सूचकांक निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में 0.7% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 0.9% की बढ़त दर्ज की गई। सकारात्मक वैश्विक संकेतों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से आज बाजार बढ़त के साथ खुले और दोपहर में थोड़े उतार चढ़ाव के साथ और ऊपर बढ़ते गए, लेकिन क्लोजिंग ऑक्शन सेशन कैश के बाद बाजारों के बंद स्तर में थोड़ी थोड़ी और बढ़त दिखाई दी।
1: Benchmark domestic equity indices rebounded today. The Sensex rose 299 points or 0.4% to close at 74,828. The Nifty jumped 118 points or 0.5% to settle at 23,447. In the broader market at the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index climbed 0.7%, while the Small-Cap 100 Index gained 0.9%. Earlier, markets opened with marginal gains, tracking positive global cues and easing crude oil prices, then extended those gains into the afternoon before pairing some of the advance. However, after the closing auction session, CAS, the benchmark indices closed slightly higher than their pre-CAS levels.
0: जी, और देखें सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का क्या हाल रहा है। 30 में से 21 कंपनियों के शेयरों में बढ़त दर्ज की गई। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों पर नजर डालें। टाटा स्टील में 3.3%, बजाज फाइनेंस में 3.1% और आईटीसी के शेयरों में 1.8% की बढ़त हुई। इसके उलट एचसीएल टेक में 1.1%, इंफोसिस और टीसीएस में 1.1% और टाइटन में 0.6% की गिरावट देखी गई।
1: In the sectoral indices on the BSE, 26 out of 28 sectors edged upward. Among the top gainers, metal climbed 2.4%, commodities increased 1.6%, and mid-small private banks rose 1.5%. In contrast, focused IT lost 0.9% and IT fell by 0.8%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,752 companies advanced, 1,655 declined, and 190 remained unchanged. दीप्शिका, आफ्टर दीज फिगर्स,
0: हाँ, इस ये चर्चा शुरू करने से पहले एक और चीज जोड़ दूं मैं।
1: जी
0: सरबजीत, रुपए का हाल हम बता दें।
1: जी
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपया 16 पैसे घटकर 95.75 रुपए पर बंद हुआ।
1: Deepshikha, coming back to you, we just went in detail with the figures and we spoke about the various sectors. So when benchmark indices rebound after a period of weakness, what does this movement generally indicate about the market sentiment?
2: Sarabjit, if you actually see the way markets have behaved, and today should not be seen in isolation. There has been a pattern, if you see, which has been there for a while. It gets battered continuously, and then there will be some, some upward movement that comes in with some buying interest, you know, which comes around. But I think investors need to make a very cautious call at this juncture in view of what the global factors are. A, there is crude, which is there on the horizon. It has inched up in view of the West Asia crisis. The other crucial factor is what happens in the US. We've seen the Fed has raised rates. There's also indication that there could be another rate increase coming in. Impact of that, which is being felt in the currency markets also. So all these factors need to be sort of taken into account when you actually are betting or buying, particularly for short term.
0: जी दीपशिखा, आपने कुछ कारक तो गिना ही दिए अभी जिनका उल्लेख मैं करना चाहता था, लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो बाकी हर जगह के जितने भी हम मार्केट्स पर नजर डालते हैं, जिनको हम मॉनिटर करते हैं लगातार, आपने अमेरिका का उल्लेख किया अभी, फेड रेट्स का उल्लेख किया आपने, इसके बाद हम देख रहे हैं जैसे कल नैसडैक like

0: या पिछले 2 दिनों में काफी सकारात्मक रहा और काफी
1: बहुत
0: अच्छा भी रहा,
1: रेजिलियंस,
0: बहुत
1: हाँ बहुत
0: जबरदस्त भी रहा।
1: रेजिलियंस रही है। हाँ
0: वो हमारे बाजारों पर दिखाई नहीं देता है।

0: जो चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के सामने, खास तौर पे अगर हम देखें क्रूड को लेके या वेस्ट एशिया क्राइसिस को देखें, तो वो एक भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये ओवरहैंग जो बाजार पर बना हुआ है, और ये काफी कुछ समय हो गया है इसको चलते हुए, दूसरा कि टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, आईटी क्षेत्र में जो आशंकाएं हैं वो बराबर बनी हुई हैं, एल नीनो का जो है आउटपुट पर कृषि के उस पर क्या असर होगा वो आशंकाएं हैं, उस पे अर्निंग्स में, कंजम्पशन में, हालांकि अभी मजबूत है कंजम्पशन, लेकिन कुछ एक ओवरहैंग सेंटिमेंट में ऐसा बिल्ट अप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, हो सकता है कि थोड़ा उस तक अगर वैश्विक स्थिति थोड़ी सुधरती है तो शायद बाजार भी थोड़ा मजबूती की तरफ बढ़ेगा।
1: Deepshikha, since you touched upon the projections part, let's first see what have been the projections as of now. Fitch Ratings has raised its forecast for India's GDP growth in the current fiscal year to 6.9%, up from its earlier projection of 6.4%. In its June Global Economic Outlook, the agency attributed the upward revision to strong first quarter growth and the resilience of the Indian economy. However, Fitch expects economic momentum to moderate during the second half of the fiscal year. It also anticipates that the Reserve Bank of India may raise interest rates by 25 basis points at its October monetary policy meeting, citing strong domestic demand, rising prices, and adverse supply side developments. Consumer spending growth is expected to slow to 5.7% in financial year 27 compared with 7.2% in the previous financial year. Fitch projects India's GDP growth to ease further to 6.5% in financial year 28, while inflation could rise to 5.5% by December 2026.
2: Ji, aur iske sath hi Standard and Poor's S&P Global Ratings ne bhi चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि का अपना अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक गतिविधि पर अपनी रिपोर्ट में एसएनपी ने बताया कि विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं मजबूत औद्योगिक गतिविधि, स्वस्थ उपभोक्ता मांग, मजबूत वस्तु निर्यात और बढ़ता सरकारी निवेश। उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 में उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसतन 5.1% रहेगी। हालांकि एसएनपी ने चेतावनी दी है कि इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास कमजोर हो सकता है, क्योंकि जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने और आयकर कटौती का लाभ धीरे धीरे कम होता जाएगा। एजेंसी ने मौसम संबंधी जोखिमों का भी उल्लेख किया है। उसके आकलन के समय कुल वर्षा सामान्य से 15% कम थी, इसलिए कृषि उत्पादन और खाद्य मुद्रास्फीति पर नजर रखना महत्वपूर्ण होगा। दीपशिखा, अभी आप जिसका उल्लेख कर रही थी, मौसम, एल नीनो और अब इसमें जीएसटी का जिक्र आ ही गया है, आयकर कटौती का भी उल्लेख आ गया है, इसके अलावा लेकिन जो खासकर हम फिच रेटिंग्स पर तो बाद में हम चर्चा करेंगे, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ और भी रेटिंग्स आई हैं दुनिया में, माहौल है कि भारत की
0: हाँ बिल्कुल अगर आप देखें तो आज जो है ओईसीडी ने भी अपना आउटलुक निकाला है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, और दोनों ने इंडिया की जो ग्रोथ है उसको बढ़ा दिया है। तो ओईसीडी ने उसको 7.1% कर दिया है 6.3% से, और एडीबी ने भी 7% कर दिया है 6.6% से, और सभी एजेंसियां ये कह रही हैं कि भारत में एक तो सर्विस क्षेत्र जो है उसके अलावा निर्यात क्षेत्र ने जिस तरह का मजबूती दिखाया है, खासतौर से हम जानते हैं कि किस तरह की चुनौतियां इस क्षेत्र के सामने आई थी, तो उसके अलावा सरकार की तरफ से खासतौर से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है जिस तरह का बढ़ाया गया और जिस क्षेत्रों पे खर्चा किया गया, तो उसका असर जो है अब निजी क्षेत्र के भी निवेश पर नजर आ रहा है, जो कि जीडीपी के आंकड़ों में भी सामने आया था, और इन एजेंसियों ने भी यही चीज दोहराई है आज।
2: जी
1: सो दीपशिखा, वी लाइक

0: to take you back to the Fitch ratings, and we'd like to have your word on this. What does this upward revision tell us about the underlying strength of the Indian economy?
1: Sarabjit, we've been discussing this, and like I said earlier, Indian economy is in a very strong position. The data is clearly showing that there is strong consumption, which the data showed us. Private investment, which was one of the key challenges, is now begin to show some movement there. So which was the greatest news? So despite all the challenges which these agencies have highlighted, it needs to be seen that overall the situation of the economy remains robust despite, you know, the risks which have been flagged. There is inflation risk which has been flagged, and also the El Nino risk, which can impact farm output, which can therefore have some implications for the demand. Whether this would translate to markets, like I said, maybe you could see the festive season sort of brings in back that kind of strength which the economy is showing in the markets.
2: जी, देवशिखा, जो जिसका उल्लेख अभी एसएनपी ने किया है, जो चार फैक्टर्स बताए हैं कि मजबूत औद्योगिक गतिविधियां हैं हमारे यहाँ और उपभोक्ता मांग काफी अच्छी है और वस्तुओं का निर्यात काफी मजबूत हालत में है और इसके साथ बढ़ता सरकारी निवेश भारत में और हमारे जीडीपी में, अगर हमेशा से हम देखें तो ये सरकारी निवेश वाला फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हमेशा से. अभी क्या हालत है और कहाँ कहाँ इसमें बढ़ोतरी हुई है जिसका असर हम देख सकते हैं, जो इन प्रोजेक्शंस में दिखाई दे रहा है?
1: अगर आप देखें, सरकारी जो निवेश है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कोविड के समय से, और चूंकि सरकार ने ये देखा कि जो जिस तरह का संकट देश के सामने था, उस समय निजी क्षेत्र जो है वो निवेश नहीं कर सकता था, तो सरकार ने खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग अपना बढ़ाया. इंफ्रास्ट्रक्चर में खास तौर से निवेश किया गया. अगर आप देखें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, हाईवे सेक्टर, रेलवे सेक्टर, सभी क्षेत्रों में कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी हद तक पुश किया गया. अगर आप देखें रेलवे का उदाहरण ले, रेलवे काफी हद तक अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, इस साल का जो बजट है उसको काफी हद तक वो टारगेट्स अचीव कर चुका है. तो ये एक जो पुश है बराबर सरकार की तरफ से की जा रही थी, और उससे ग्रोथ को काफी बल मिला है. जो क्षेत्र जहां पर खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करते हैं, वहां पर बहुत बल मिला, डिमांड वहां क्रिएट हुई है, और अब उसका असर जो है फाइनली नजर आ रहा है. जिस तरह से निजी क्षेत्र का निवेश अब थोड़ा थोड़ा चालू हो गया है कुछ क्षेत्रों में, तो उम्मीद की जाती है कि ये आगे मजबूती पकड़ेगा. और जैसा कि हम कह रहे थे कि हो सकता है आने वाले समय में ये मजबूती जो अर्थव्यवस्था की है वो निवेशकों को बाजार की तरफ और आकर्षित करे और बाजार में मजबूती आए. लेकिन हाँ, बाजार का एक सेंटिमेंट जो है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर रहे थे, उस पर बातचीत कर रहे थे, वैश्विक स्थिति जो है बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत चुनौतियां हैं वहां पर. तो अगर वैश्विक स्थिति जो है वो अनुकूल रहती तो हो सकता है भारतीय बाजार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता.
2: जी, हम कह सकते हैं कि हम टिके हुए हैं, और खास करके जो जीडीपी के अनुमान है, ये तमाम संकटों के बावजूद बेहतर.
1: बिल्कुल, भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छी स्थिति में टिकी हुई है, आंकड़े कम से कम यही बता रहे हैं.
2: जी, और अगली खबर है भारत कनाडा व्यापार पर. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता अच्छी प्रगति कर रही है और दोनों देश दिसंबर के मध्य में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन तक बातचीत पूरी करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. कार्नी ने यह भी कहा कि उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय के आसपास कनाडा की यात्रा करेंगे, हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है. कनाडा

0: annually. Yet there is much more room to progress. Our strengths are highly complementary. India brings technology, pharmaceuticals, skilled resources, digital capabilities, and a large and growing market. While the SILA offers opportunities in critical minerals, sustainable energy, agriculture, food resources, and other natural assets. Our own growing middle class makes us a natural partner for each other.
1: So there's a call for a stronger India-SILAC cooperation, a greater voice for the global south. Deepshikha, we'd like to know from you, against the backdrop of changing global equation, how important is greater cooperation between India and the Latin American and Caribbean region?
2: See, like we discussed earlier, you know, India is trying to forge alliances with different countries and global south. Definitely, this was the theme at G20 also. That's a big focus area for India. Latin America, as we know, they have some critical minerals, and we are trying to reach an agreement with them on supply of critical minerals. So definitely a big focus area for India is forging these multiple trade alliances with multiple trade partners to secure resilience of its own supply chains.
3: जी, और नया मर्चेंट डिस्काउंट रेट ढांचा अगले महीने की 15 तारीख से लागू होगा. इस ढांचे के तहत 2000 रुपए तक के यूपीआई लेन देन पर शून्य एमडीआर लगेगा. आपको यह शंका हो सकती है कि क्या यूपीआई के माध्यम से दोस्तों या परिवार को पैसे भेजने पर कोई शुल्क लगता है. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने कहा है कि पर्सन टू पर्सन लेन देन भुगतान करने वाले यानी पैसा भेजने वाले और लाभार्थी यानी पैसा प्राप्त करने वाले दोनों के लिए पूरी तरह से मुफ्त रहेगा. यूपीआई का उपयोग करके किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कोई भी राशि ट्रांसफर करने या प्राप्त करने या यहां तक कि खुद के खातों में भी ट्रांसफर करने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा. नागरिक बिना किसी लेन देन शुल्क के किसी भी स्वीकृत राशि का यूपीआई पर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफर कर सकते हैं.
1: Global crude oil prices rose today but remained near a two-week low as concerns over rising supplies continued to weigh on the market. Brent crude was trading 1% higher at $100.19 per barrel. West Texas intermediate crude was trading 0.1% up at $90.61 per barrel at the time of writing this report.
3: तेल पर छोटी सी बात बता दें दीपशिखा.
2: तेल तो बहुत ही अनसर्टेन हो गया है. हम देख रहे हैं वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट जब तक रिजॉल्व नहीं होता है तब तक तेल पर प्रेशर बना रहेगा. भारत के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है.
3: और भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% गिरकर 152,016 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. चांदी मामूली गिरावट के साथ 232,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी. और दीपशिखा, आज वक्त इतना ही है. हालांकि चलते चलते हम जरूर कहना चाहेंगे कि ये जो सोने और चांदी का हाल था पिछले एक दो सालों में हमने जो हाल देखा था कई लोगों के लिए बहुत अच्छा निवेश साबित हुआ था. लेकिन अब देख रहा हूं वो शायद उतनी ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है या इतने पीक पर पहुंचा हुआ है कि अब लोग बहुत ज्यादा इस पर भाव नहीं दे रहे.
2: बिल्कुल, जो एकदम तेजी जो आई थी दोनों सोने और चांदी के दामों में वो थोड़ी सी ठहर गई है, थोड़ा ठहरा हुआ है. तो अब जो अगर निवेश भी है वो लॉन्ग टर्म और पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के लिए उस पर आपको देखना होगा.
3: जी, दीपशिखा कार्यक्रम में आने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
2: धन्यवाद.
1: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज राइज, सेंसेक्स गेन्स 299 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स नियरली 24,450. Global rating agencies Fitch and S&P Global raise India's GDP growth forecast to 6.9% and 7% respectively for this fiscal year. And global crude oil prices slip to near two-week low. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

1958 में आई फिल्म मधुमती से आपने ये गीत सुना। सलील चौधरी का संगीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में लिखा ये गीत शैलेंद्र ने। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में बस इतना ही। अंजू आ चुकी हैं स्टूडियो में निशिगंधा लेकर। आप सबको छोड़े जाती हूँ उन्हीं के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। जी हाँ, जिसे सुन रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ 100.1 MHz पर। मुझे दीजिए इजाजत और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और राजनीतिक रूप से प्रेरित झूठे प्रचार को बार बार दोहराने से ये वास्तविकता नहीं बदल सकती। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश की युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के और तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पुनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड।

का दायित्व संभालेंगे। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने कहा कि बाजार नियामक सेबी लंबी अवधि वाले डेरिवेटिव उत्पादों के लिए मार्जिन आवश्यकताओं को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य वायदा एवं विकल्प खंड में जोखिम प्रबंधन और वित्तीय क्षमता अनुसार तथा दीर्घकालिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे निवेशक सुरक्षित ट्रेड करें और धीरे धीरे मुनाफा कमाएं। राजस्थान के जोधपुर में कल एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, जिसमें आग बुझाने के प्रयासों के दौरान विस्फोट में 13 अग्निशमन कर्मी घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि परिसर में रखे ज्वलनशील रसायन के ड्रमों में आग पकड़ने से ये तेजी से फैल गई, जिससे कई विस्फोट हुए। घटना की सूचना मिलते ही करीब 10 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 12:11 और 3 सेकंड और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूँ आज अंजू, आपके साथ लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है निशिगंधा। प्यार भरे नमस्कार के साथ शुरुआत कर रही हूँ इस कार्यक्रम की और खूबसूरत गीतों की। इस दुनिया की दौड़ में सब कुछ कुछ ना कुछ ढूंढ रहे हैं, कोई पैसा, कोई शोहरत और कोई कामयाबी, पर मेरी तलाश तो उसी दिन तुम पर खत्म हो गई जब तुम मिले, और अब कुछ पाने की ख्वाहिश ही नहीं बची। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है, तुम्हें पाया तो जैसे खुद को पा लिया, तुम्हें पाया तो जैसे खुद को पा लिया, तेरी धड़कन को अपने दिल में ही बसा लिया। अब जमाने से मुझे कोई तमन्ना ही नहीं, खुदा से जो मांगा था वो मैंने तुमसे पा लिया।

अच्छा सुनो, दुनिया ला खूबसूरत सही, तेरे मेरे लिए सबसे हसीन नज़ारा तुम्हारी ये आँखें हैं। जब तक इनमें मेरे लिए मोहब्बत है ना, मुझे जिंदा रहने के लिए भला किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। तेरी नज़रों के साए में मिला है मुझे वो सुकून, जिसे ढूंढती फिरती रही। अब हर लम्हा बस मेरी यही चाहत है कि तू ही मेरी जिंदगी में रहे और तू ही बने मेरा सुकून।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है निशिगंधा। मैं हूं आपके साथ अंजू।

पता नहीं क्या जादू है तुम्हारी इन आंखों में और इस सादगी में। मैं लाख संभालूं इस दिल को, पर तुम्हें देखते ही न जाने कहाँ खो जाता है। तुम्हें देख न जाने क्या हो जाता है, हर एक पल में ये दर्द कहीं खो जाता है। तुम मुस्कुराकर बस देख भर लो हमें, तो ये बिखरा हुआ समा भी खूबसूरत हो जाता है।

एक बात याद रखना, आजमाने के लिए तो तुम्हें बहुत मिल जाएंगे इस दुनिया में, पर मेरी तड़प कर भी, मेरी तरह तड़प कर मुस्कुराने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। इस तरह ना आजमाओ मुझे कि मैं पत्थर हो जाऊं, इस तरह ना आजमाओ कि मैं पत्थर हो जाऊं, तेरी यादों के समंदर में कहीं खो जाऊं। रख लो मुझे समेट कर अपने पास ही यहीं कहीं, ऐसा ना हो कि मैं गुजरा हुआ कल हो जाऊं।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दुनिया के लिए सिर्फ कुछ लफ्ज हो सकते हैं, पर मेरे लिए ये मेरी पूरी कायनात है। अगर बुरा ना मानो तो अपने दिल की बात कह दूं आज, कि इश्क है तुमसे कोई दिल लगी नहीं, तुम्हारे बिना अब ये जिंदगी जिंदगी नहीं। खोल देना चाहते हैं आज दिल की किताब को, कह दें वो बात जो अब तक किसी से कही नहीं।

दुनिया की कोई भी चीज़ अब उतनी खूबसूरत नहीं लगती जितना तुम्हारा चेहरा लगता है, जब भी अब आंखें बंद होती हैं सिर्फ तुम्हें ही देखती हैं। अब तो बस इस दिल की एक ही जिद है कि तुम्हें बस अपनी आंखों में बसाना चाहते हैं, दुनिया की हर नज़र से तुम्हें छुपाना चाहते हैं, कोई और अक्स ना आ सके इन नज़रों में, इसलिए खुद को तुम्हारे साथ बसाना चाहते हैं।

दोस्तों अब समय है समाचारों का। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीय पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उनसे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनामिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्म कुमारियों की ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, सबल, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का और विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का और अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सीमा सुरक्षा बल BSF के साथ मिलकर बांग्लादेश से तस्करी से लाए गए 12 किलो सोना जब्त किया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा पर सोने की तस्करी रोकने के लिए कई बार कार्रवाई की गई है। मंत्रालय ने बताया कि बिहार और बंगाल की बांग्लादेश से लगी सीमा पर लगभग 17 करोड़ रूपये मूल्य का 12 किलोग्राम विदेशी सोना जब्त किया गया है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशू के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमानिंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य

रात के सुहाने सफर में शुरुआत हो चुकी है अपने आपके अपने खूबसूरत कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। एक बार फिर से मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी का। समय हुआ है 1:11:23। इस घंटे आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। चंद अल्फाज शायरी लिए हुए, जब थाम लिया तुम्हारा हाथ तो इस जमाने से क्या डरना, जब थाम लिया तुम्हारा हाथ तो इस जमाने से क्या डरना, और क्या ही खौफ हो किसी का जब ये मोहब्बत बहुत शिद्दत से की हो।

अजीब बात है ना कि ये चांद आज ना जाने क्यों हवा में कहीं खोया सा है। तेरा चेहरा इसे दिखाई नहीं दिया तो इसका नूर भी आज फीका सा है।

पता है, कभी कभी लगता है कि हम अपनी जिंदगी खुद लिख रहे हैं, पर मोहब्बत के रास्ते पर पैर रखते ही समझ आता है कि कलम तो भाई किसी और के हाथ में है, हम बस चलते जाते हैं ये जाने बिना कि मंजिल कहाँ है। तभी तो किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहब्बत की कहानी भी बड़ी अजीब है, न जाने कहाँ रुकती है। मोहब्बत की कहानी भी बड़ी अजीब है, न जाने कहाँ रुकती है, कभी पल भर में मुकम्मल तो कभी ये उम्र भर की कसक छोड़ जाती है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों, समय हुआ है 1:28:13। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ अंजू। तेरा मेरी जिंदगी में आना जैसे किसी दुआ का कबूल होना है। अब इस दिल का हर लम्हा बस तेरे ही इर्द गिर्द घूमता है।

दूरी तो सिर्फ फासलों की होती है, दिल के रिश्तों में तो जब भी किसी को महसूस करो तो वो धड़कनों में हाजिर होता है। आसपास ही महसूस करती हूँ तुम्हें हर लम्हे में, आसपास ही महसूस करती हूँ तुम्हें हर लम्हे में, जब भी सोचती हूँ तुम्हें तो तुम मिल ही जाते हो मुझे मेरे ही दिल में।

आपको रोकने की जिद नहीं करेंगे, क्योंकि जो दिल से रुकना ना चाहे उसे जबरदस्ती रोका नहीं जाता। बस कुछ पल और बैठिए, फिर शौक से चले जाइएगा। चले जाइएगा शौक से, पर अभी जरा ठहरिए तो सही। इस दिल को आपकी मौजूदगी से थोड़ा बहलने तो दीजिए सही।

हम राहों में खड़े हैं तेरी, कोई शिकवा नहीं जमाने से, बस एक बार तुम मिल जाओ तो लौट आएंगे हम इसी बहाने से।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से मिलूंगी कार्यक्रम रात सुर में ही लेकर। कहीं जाइएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई-30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथी आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रूपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में संशोधित उड़ान योजना लागू करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य सरकार की ओर से आंध्र प्रदेश हवाई अड्डा विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक ने इस पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। आंध्र प्रदेश उन 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जिन्होंने इस योजना के तहत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संशोधित उड़ान योजना का उद्देश्य किफायती हवाई संपर्क का विस्तार करना और कम सेवा वाले और सेवा रहित क्षेत्रों में विमानन बुनियादी ढांचा मजबूत करना है। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी ना ओरेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशाने

दोस्तों, समय हुआ है 2:11 और 5 सेकेंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। एक बार फिर से मैं अंजू करती हूँ आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत गीतों का गुलदस्ता। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम के बहुत ही मधुर गीत के साथ।

कुछ रिश्ते जमीन पर बनते हैं और कुछ कहते हैं कि आसमान में, पर हमारा रिश्ता तो सीधा दिल से दिल के बीच बना है। इसलिए इस दुनिया को क्यों बताऊं कि क्या रिश्ता है तेरा मेरा, ये तो लफ्जों में बयां भी नहीं होता। लेकिन तू पास ना हो तो इस दिल का कोई ठिकाना भी नहीं होता।

कहते हैं जो आपका होता है वो कहीं ना कहीं घूम फिर कर आपके पास आ ही जाता है। और आज तुम्हें अपने सामने देखकर बस यही ख्याल आ रहा है कि यूं मिल जाओगे तुम मुझे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल

और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जुबान खामोश है तो क्या हुआ, आंखें तो सब सच बोल ही देती है ना। जब दिल में कोई बस जाता है तो ये नजरें अपने आप गवाही देने लगती हैं। तभी तो किसी ने कहा है कि चुपके से नजरों का मिलना और मुस्कुरा देना, चुपके से नजरों का मिलना और मुस्कुरा देना, देखो देखो जरा इन निगाहों को, सीख लिया है किस तरह से दिल चुरा लेना।

वैसे तो अक्सर हम खुद को बहुत संभाल कर रखते हैं, हर बात पर काबू रखते हैं, लेकिन जब तुम सामने आते हो तो ये सारी समझदारी धरी की धरी रह जाती है। सच तो ये है कि तुम्हें देखकर हम कहीं खो जाते हैं, या फिर यूं कहें कि तुम्हें देखकर इस कदर हम होश खो बैठे हैं, तुम्हें देखकर इस कदर हम होश खो बैठे हैं कि ये जो दिल है हमारा, हमारा है ही नहीं, हम तो तुम्हारे ही हो बैठे हैं।

दोस्तों अब हो गया है वक्त चलने का, क्योंकि स्टूडियो में आ चुकी हैं भारती अगला कार्यक्रम लेकर हमराही। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सभी को मेरा नमस्कार और शुभ रात्रि।

0: ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री टोपियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी स्मार्ट एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देशभर में 40 नई महल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का और हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के, तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA ने आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं और उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के सचिव देवजीत सौकिया ने कहा है कि मौजूदा चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर का कार्यकाल 4 अक्टूबर को समाप्त होने तक बोर्ड के पास पर्याप्त समय है और इसके बाद ही इस पद को लेकर कोई फैसला किया जाएगा। अजीत अगरकर ने 18 सितंबर को BCCI को बताया था कि वे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपने 3 साल के कार्यकाल को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है। श्री सोकिया ने मीडिया से कहा कि BCCI जब भी निर्णय लेगा उसे सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाएगा। एशियाई खेलों में रोशिबीना देवी नाओमिन वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंगत्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपके दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस प्यारे से गीत के साथ।

रात की खामोशी में जब दिल अपने सबसे करीब होता है, अपनी ही सुनता है, तब कुछ रिश्तों की यादें चांदनी की तरह मन को रोशन कर देती हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है हमराही। आधी आधी रात सरकती जाती है, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहती हैं, लेकिन कुछ मीठी यादें हैं जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

कितने ही साल गुजर जाएं, सच्चे साथ की गर्माहट कभी पुरानी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त के साथ बदलते नहीं, बल्कि हर बीतते साल के साथ और मजबूत होते जाते हैं।

जब कोई कहे साथिया तुम मेरे सपनों के मीत हो, तो लगता है जैसे रात की तन्हाई में दिल ने अपने सबसे खूबसूरत एहसास को शब्द दे दिए हों।

इन मधुर गीतों के साथ इस सुहानी रात की यादों को, मोहब्बत को और खूबसूरत एहसासों को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले ली जाए। जी हाँ, 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर प्रोग्राम अरुणिमा। आप मुझे दीजिए अनुमति छोड़ के जा रही बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। नमस्कार। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा, भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी

0: को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन के तथाकथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 एमकेआई जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मकुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सबकी जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा है कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को छत्तीसगढ़ और हरियाणा का, हरीश द्विवेदी को बिहार का प्रभारी बनाया गया है। विनय सहस्रबुद्धे को दिल्ली का, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है। राम माधव तमिलनाडु और उत्तराखंड के तथा तरुण चुग गुजरात के प्रभारी होंगे। सतीश पूनिया को जम्मू कश्मीर और पंजाब का, अनिल एंटनी गोवा और नागालैंड का दायित्व संभालेंगे। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांधा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए यह कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित की जा चुकी है। इनकी बिक्री 35 रूपये प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक 7वें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। बिहार, विदर्भ और सिक्किम में भी मूसलाधार बारिश की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे और मराठवाड़ा में भी तेज बारिश का अनुमान है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में आज आंधी आ सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100%.

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म डिस्को डांसर के इस गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है पप्पी लहरी ने, और संगीतकार पप्पी लहरी।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म अंगूर से आशा भोसले की आवाज में संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार गुलजार।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और प्रोग्राम है अरुणिमा। अभी आपने गीत सुना फिल्म जुर्म से कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज में।

प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म शौकीन से किशोर कुमार की आवाज में संगीतकार आर डी बर्मन, गीतकार योगेश।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत, फिल्म मोहम्मद रफी, क्षमा कीजिएगा, फिल्म आमने सामने से मोहम्मद रफी की आवाज में, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी, गीतकार आनंद बख्शी।

अगला गीत सुनते हैं फिल्म चलती का नाम जिंदगी से, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और मना दे की आवाज में। गीतकार इशात और संगीतकार किशोर कुमार।

और समय कह रहा है कि अब आपसे अनुमति ले लीजिए। जाने से पहले बस यही कहूंगी कि आप कहीं मत जाइएगा। जी हाँ, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। मुलाकात होगी 5:10 पर प्रोग्राम भोर सुहानी में। छोड़ के जा रही हूँ बहुत ही प्यारे गीत के साथ। गीत है फिल्म दो दिशाएं से, यशुदास की आवाज में, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो मैं आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत ने रूस और ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर शुल्क लगाने के अमरीकी कानून पर अपने हितों और चिंताओं को एक बार फिर दोहराया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने इस कानून पर भारत की चिंताएं स्पष्ट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ खाड़ी देशों और यूक्रेन के हालात पर भी व्यापक चर्चा की। श्री रूबियो ने कहा कि भारत और अमरीका प्रमुख क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहे हैं। भारत ने इस्लामी सहयोग संगठन ओआईसी के तथा कथित जम्मू कश्मीर संपर्क समूह के संयुक्त घोषणा पत्र में भारत पर की गई निराधार और तथ्यात्मक रूप से गलत टिप्पणियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का ओआईसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

0: मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं। इस तरह के प्रेरित बयानों का बार बार समर्थन करना संगठन की विश्वसनीयता पर ही गंभीर सवाल खड़े करता है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 160 सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार और उससे जुड़े उपकरणों की खरीद के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 810 करोड़ रुपए से अधिक का समझौता किया है। इसकी आपूर्ति वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बीच की जाएगी। ये सैटेलाइट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित ग्लाइड बम है। इसे जगुआर, हॉक और सुखोई 30 MKI जैसे विमानों से दागा जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के वडोदरा में ब्रह्मा कुमारियों के ग्लोबल स्पिरिचुअल पैलेस रिट्रीट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने विकसित भारत के लिए युवा राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति की जागृति अभियान का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रपति ने कहा कि देश को युवा शक्ति की आवश्यकता है।
1: युवाओं को सशक्त, संस्कारवान, आत्मनिर्भर, शांतिपूर्ण और जिम्मेदार बनाना हम सब की जिम्मेदारी। हमें ऐसे युवा तैयार करना है जो ज्ञान, टेक्निक और कौशल से युक्त, साथ ही आत्मविश्वास, आत्म अनुशासन, सकारात्मक सोच, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों से भी परिपूर्ण।
0: निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची में संशोधन सहित सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। आयोग ने हाल के महीनों में देश भर में 40 नई पहल शुरू की है और विशेष गहन पुनरीक्षण सहित कई चुनावी सुधार किए हैं। आयोग ने कहा कि उसके सभी अधिकारी चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। प्याज लेकर चलने वाली कांदा एक्सप्रेस आज कोलकाता पहुंचेगी। त्योहारों के मौसम को देखते हुए ये कदम महत्वपूर्ण है। राज्य में मोबाइल वैन के जरिए करीब 1400 मीट्रिक टन प्याज वितरित किया जा चुका है। इनकी बिक्री 35 रुपए प्रति किलो की दर से की जा रही है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में आज से 26 सितंबर तक सातवें नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें यमुना पर अकादमिक विमर्श केंद्रित रहेगा। कार्यक्रम में नदियों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान, समकालीन चिंताओं तथा उनके सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व से जुड़ी सामग्री प्रस्तुत की जाएगी। एशियाई खेलों में रोशीबीना देवी नाओ रेम वुशु के फाइनल में पहुंच गई हैं। 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में उन्होंने इंडोनेशिया की थानिया कुसुमा निंग त्यास को हराया। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सेमीफाइनल में भारतीय टीम को चीन से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। निशानेबाजी में स्कीट स्पर्धा के माहेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और राइजा ढिल्लों की महिला टीम और अनंतजीत सिंह, नरुका महराज, अहमद खान और भवतेग सिंह गिल की पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष बी इब्राहिम। India has reiterated its interests and concerns with regard to sanctioning Russia and Iran Act. External Affairs Minister S. Jaishankar met U.S. Secretary of State Marco Rubio on the sidelines of the UN General Assembly session last evening and raised concerns regarding the act. Both leaders also discussed India-U.S. bilateral relations and Gulf and Ukraine situations. U.S. President Donald Trump signed into law the Sanctioning Russia and Iran Act last week, which authorizes him to impose tariffs of up to 100% on countries buying Russian oil and gas. In response, New Delhi said that it will take all necessary steps to protect its economic interests and ensure energy security for the nation. Jaishankar, who arrived in New York City on Sunday, is leading the Indian delegation for the 81st session of the UN General Assembly. After meeting with Jaishankar, Rubio said both countries are building strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar co-chaired the L69 Consultative

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है प्रोग्राम भोर सुहानी का। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की इस गीत के साथ।

प्रकृति अपनी सुंदरता और सुगंध से वातावरण को खुशनुमा बनाती है, जिससे हमारे जीवन को आनंद और शांति मिलती है। तो इसलिए नेचर की जो सुंदरता होती है ना, उसे देखकर हम अपनी परेशानियाँ, अपने दुख थोड़े कम कर जाते हैं, कम हमारे कम हो भी जाते हैं। तो इसलिए नेचर का हमें थोड़ा सा ही सही पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के

न्यूज ऑन एयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।

जीवन में एक अच्छे दोस्त का होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुख हो या दुख, हमेशा साथ देते हैं दोस्त हमारे।